श्रोताओं, अभी आप संवेद स्वरों में मात्र वंदना सुन रहे थे। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं दीपाली और सोहेल की आवाजों में श्रीकांत मिश्रा की लिखी रचना।

भाई गुरदयाल सिंह व साथियों के गाए इस शब्द के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 5:55 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आज हम कुछ बातें करेंगे उर्वरकों के प्रयोग का सही समय तथा इसके इस्तेमाल से जुड़े हुए दूसरे मुद्दों पर। उर्वरक इस्तेमाल करने के समय को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे फसल की प्रकृति, इसकी वृद्धि की अवस्था और उसकी पोषक तत्वीय आवश्यकता, मृदा की परिस्थितियाँ, उर्वरक की प्रकृति आदि आदि। उर्वरक का इस्तेमाल फसल की बुआई के पहले, बुआई के समय और बुआई के बाद किया जा सकता है। कुछ फास्फोरसधारी उर्वरक जैसे रॉक फास्फेट आदि में फास्फेट जल में अविलय के रूप में होता है। मिट्टी में डालने पर वे मृदा अम्ल के संपर्क में आते हैं, जिससे अघुलनशील फास्फेट घुलनशील रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। चूंकि ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है, अतः ऐसे उर्वरकों का इस्तेमाल बुआई से कम 2 से 4 सप्ताह पहले करना ही कारगर साबित हुआ है। बुआई के समय या बुआई के ठीक पहले उर्वरकों का प्रयोग आधारीय उपयोग या बेसल ड्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। पौधों के प्रमुख पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, विशेषकर नाइट्रेट, सर्वाधिक गतिशील होता है। लीचिंग द्वारा नाइट्रेट नाइट्रोजन तेजी से निचली सतहों में चला जाता है और इस प्रकार से ये नष्ट हो जाता है। अतः नाइट्रेट युक्त उर्वरकों का इस्तेमाल उसी समय करना चाहिए जब मृदा परिस्थितियाँ अनुकूल हों और खेत में अधिक पानी ना हो। फास्फेट की संपूर्ण मात्रा बुआई के साथ ही दे देनी चाहिए, क्योंकि ये जड़ों के निर्माण में मदद करता है, जिससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। अतः उर्वरक उपयोग हेतु नाइट्रोजन की आंशिक मात्रा एवं फास्फोरस, पोटाश, गंधक व जिंक युक्त उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा का प्रयोग बुआई के समय करना चाहिए। नाइट्रोजन के बेहतर उपयोग के लिए आवश्यक है कि फसल के विभिन्न वृद्धि काल के दरमियान नाइट्रोजन धारी उर्वरक का प्रयोग कई बार में किया जाए। खड़ी फसल में उर्वरकों के इस्तेमाल को टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। साधारणतः बुआई के समय उपयोग के अतिरिक्त नाइट्रोजन का इस्तेमाल खड़ी फसल में 2 से 3 बार में किया जाता है। धान की प्रजाति में नाइट्रोजन का इस्तेमाल कल्ले और बालियां निकलते समय करना चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पहले से ही अगर हमें पता चल जाए तो बुआई के समय इसका इस्तेमाल करना बेहतर होता है। खड़ी फसल में अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई दें तो खड़ी फसल में पर्णीय छिड़काव करने की जरूरत पड़ सकती है। उर्वरक प्रयोग द्वारा उपज में वांछित वृद्धि न मिल पाने के कई कारण हैं, जैसे अनुचित जल प्रबंध, गौण एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग, उर्वरकों के प्रयोग की गलत विधि व समय, फसल में कीट व्याधि व रोग तथा खरपतवारों की बढ़ती समस्या और समय से उन पर नियंत्रण न हो पाना, लगातार एक ही फसल चक्र अपनाने से मिट्टी के भौतिक व रासायनिक गुणों में गिरावट, उर्वरक विशेषकर फास्फेटिक तथा विभिन्न ग्रेड के एनपीके मिश्रणों का संदिग्ध गुणवत्ता वाला होना, यानी अच्छे गुणवत्ता वाले उर्वरकों का प्रयोग न करना। उर्वरकों के प्रयोग से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ एक बातों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। नाइट्रोजनधारी उर्वरकों की टॉप ड्रेसिंग में सावधानी। दोपहर बाद टॉप ड्रेसिंग उर्वरक को यथासंभव मिट्टी में मिला देना, ताकि गैस के रूप में नाइट्रोजन की हानि को रोका जा सके। नाइट्रोजन का पूरे फसल काल में विभाजित कर उपयोग करना भी काफी लाभप्रद होता है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरक का प्रयोग करें तथा उन्नत खेती की जो भी आवश्यकताएं हैं उनका अनुपालन करें। फसल चक्र में उचित परिवर्तन करके भी हम उर्वरकों के प्रयोग में जो फायदा होता है उसमें और इजाफा कर सकते हैं। गंधक की कमी वाले क्षेत्रों में सिंगल सुपर फास्फेट तथा अमोनियम सल्फेट का ही प्रयोग करना चाहिए। धान की फसल में नीम की खली लेपित यूरिया सुपर ग्रैन्यूल का प्रयोग करने से ज्यादा फायदा होता है। मिट्टी एवं जलवायु की विभिन्नता के अनुसार फसलें एवं किस्मों का चयन करना चाहिए और उसी में उर्वरकों का अगर हम प्रयोग

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों बाद समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जलविद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली यह यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने ये यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने

नेदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में पांचवें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में चौथा स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार एमवी भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल 29 अगस्त को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की वापसी 30 अगस्त को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नालंदा लिटिल अंडमान के लिए 30 अगस्त को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान उसी रोज रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार के लिए 3 सितंबर को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस जलयान की वापसी 4 सितंबर को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप और स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान आज ही स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2 बजे शहीद द्वीप और शहीद द्वीप से आज ही 3:30 पर श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की वापसी कल 29 अगस्त को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप व लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल 29 अगस्त को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप के लिए कल 29 अगस्त को सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला व लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल 29 अगस्त को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान 30 अगस्त को सवेरे 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप और स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रंगत कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप और शहीद द्वीप से दोपहर बाद 3:30 पर श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप के लिए कल 29 अगस्त को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान शनिवार प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम

0: आकाशवाणी का ये श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब आपके मनोरंजन के लिए पेश है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष
2: नमस्कार श्रोताओं, इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज कार्यक्रम का शीर्षक है बहना। दोस्तों, बहन हमारे जीवन का एक बहुत प्यारा और अनमोल रिश्ता होता है। कभी दोस्त बनकर हमारा साथ देती है तो कभी माँ की तरह चिंता करती है। बहन के साथ बिताए हुए हर पल हमेशा खास होते हैं।

दोस्तों, बहन सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि दिल की प्यारी दुआ होती है। भाई की हर छोटी खुशी में सबसे पहले खुश होती है। कभी रोटना, कभी मनाना, कभी नोक झोंक तो कभी प्यार भरी बातें, यही तो है इस प्यार भरे रिश्ते की सौगात।

दोस्तों, बहन का रिश्ता प्यार, विश्वास और अपनापन से बना होता है। समय कितना भी बदल जाए, भाई बहन की स्नेह की डोर हमेशा दिल से बंधी होती है। इसीलिए हमें अपनी बहन का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ प्रेम से रहना चाहिए।

0: दोस्तों, अब इंद्रधनुष कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।
2: श्रोताओं, अभी आप बहन शीर्षक पर इंद्रधनुष कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही थी तेरेसा। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:23 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस गान की 344वीं कड़ी।

रावण ने अपनी नाभि में अमृत छिपा रखा था। उसका वध करने के लिए श्री राम ने काल सर्पों के समान 31 वाण छोड़े। एक वाण ने उसकी नाभि का अमृत सोख लिया तथा बाकी 30 ने उसके सिर और भुजाएं काट डालीं। बिना सिर और भुजाओं वाले धड़ को प्रचंड वेग से दौड़ते देख श्री राम ने एक और वाण से उस रुंड के 2 टुकड़े कर दिए जो जाकर मंदोदरी के सामने आ गिरे।

श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान की 344वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे, शोभना राव और कविता कृष्णमूर्ति, तथा संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं गांधी चर्चा की 9वीं कड़ी।

नमस्कार श्रोताओं, गांधी चर्चा में बातें शांतिदूत गांधी की। गांधी जी ने कस्तूरबाई के साथ भारत यात्रा शुरू कर दी। वह रेल के तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे। वह शहर, कस्बे और गांवों में गए। जनता की गरीबी ने गांधी जी का मन छू लिया। वे भारतीय जनता की तत्पर सेवा करने के उपाय सोचने लगे। उन दिनों कांग्रेस भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए। कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वे कलकत्ता गए। सम्मेलन में उन्हें ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाग लेने वाले अधिकतर लोग पश्चिमी तौर तरीके के कपड़े पहने हैं। वे अंग्रेजी बोलते थे। उनके सोचने का ढंग भी पश्चिमी था। गाँव से आए प्रतिनिधि सब चुप रहते थे। अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि जिन शिविरों में ठहरे थे, वहां के शौचालय बहुत गंदे थे। चारों ओर दुर्गंध फैली थी। बस गांधी जी ने बाल्टी और झाड़ू ढूंढ निकाली और शौचालयों की सफाई में जुट गए। जब वे सफाई कर रहे थे, एक आदमी ने उन्हें पहचान लिया और उनसे पूछा, गांधी जी, आप शौचालय क्यों साफ कर रहे हैं? ये तो हरिजनों का काम है। गांधी जी ने नाराज होकर कहा, हाँ क्यों, ऊंची जात वालों ने इस संस्था को गंदा और ना छूने लायक बना दिया है। ये कहते हुए उन्होंने और पानी डाला व झाड़ू से जमीन रगड़ने लगे। वे तब तक रगड़ते रहे जब तक शौचालय एकदम साफ ना हो गया। अधिवेशन के बाद गांधी जी बम्बई आ गए और वकालत करने लगे। वकालत शुरू ही की थी कि उनके पास नाटाल से उनके एक भारतीय मित्र का पत्र आया। गांधी जी इंग्लैंड से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि यहाँ के भारतीयों की ओर से आप ही हमारा मामला उनके सामने रखें। आपके आने की प्रतीक्षा है। गांधी जी झटपट तैयार हुए और पानी के जहाज से नाटाल दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। नाटाल में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने उनका स्वागत किया। गांधी जी भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता थे। वे अंग्रेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिले। मुलाकात निरर्थक रही। जब वे अपने घर वापस आए, उन्हें एक पत्र मिला। अब ट्रांसवाल में रहने वाले भारतीयों ने उन्हें तुरंत बुलाया था। वह जल्दी से ट्रांसवाल पहुंचे। उन्होंने वहां भी भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और अंग्रेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से फिर भेंट की। यहां भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उनसे उदासीन बर्ताव किया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों ने गांधी जी से प्रार्थना की, गांधी जी, अब आप यहाँ ठहर जाइए। हम भारतीयों के समान अधिकार के लिए संघर्ष

गांधी जी उनकी बात मान गए। उन्होंने कस्तूरबाई और बच्चों को भी दक्षिण अफ्रीका बुला लिया। कस्तूरबाई ने सबसे बड़े बेटे को पढ़ाई पूरी करने के लिए भारत में ही छोड़ दिया और तीनों छोटे बेटों के साथ दक्षिण अफ्रीका आ गई। गांधी जी ने सबका स्वागत किया। गांधी जी नाटाल में अच्छी तरह जम गए थे। उन्होंने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया। वे अपने विचार व्यक्त करने के लिए बराबर लेख लिखते थे। उनका एक ऑफिस नाटाल में था और दूसरा ट्रांसवाल में जोहानसबर्ग में था। अब उन्होंने सोचा वे ऐसा स्थान बनाए जहां उनके सब अनुयायी एक साथ रहकर सादा जीवन बिता सके। गांधी जी ने 100 एकड़ जमीन प्राप्त की और उन्होंने फिनिक्स में एक फार्म की स्थापना की। ये फार्म डर्बन से 14 मील दूर था। फार्म के चारों तरफ गन्ने के खेत थे, एक मीठे पानी का सोता भी था। गांधी जी और उनके मित्रों ने अपने परिवारों के लिए 8 छोटे छोटे छप्पर वाले घर बनाए। फिनिक्स फार्म में रहने वालों को अपने लिए स्वयं सोते से पानी भर कर लाना पड़ता था। सुबह सुबह वहाँ के बच्चे गेहूं से आटा पीसने में अपने माता पिता की सहायता करते। सामुदायिक रसोई घर में भोजन बनवाने में भी बच्चे मदद करते थे। एक बड़े हॉल में छापा खाना लगाया गया। इसी में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र छापा जाता था। बैठने के लिए कुर्सी मेज के स्थान पर फर्श पर चटाइयां बिछी थी। रोटी पकाने के लिए गांधी जी ने एक खास तरह का तंदूर बनाया जिसमें गेहूं के आटे की डबल रोटी बनाई जाती थी। भारी काम करने के लिए एक नौकर रखा गया, लेकिन उसे भी आश्रम निवासियों की तरह ही माना जाता था। इतवार को सब आश्रम निवासी गांधी जी के साथ मिलकर प्रार्थना करते थे। वे सब एक साथ गीता के श्लोक, कुरान की आयतें और बाइबल के धर्म गीत गाते थे। गांधी जी के घर में उनके परिवार के सभी सदस्य बारी बारी से घर का काम करते थे। गांधी जी स्वयं अपने कपड़े धोते थे और सबसे भी ऐसा ही करने को कहते थे। वे शौचालय भी साफ करते थे और दूसरों से भी करवाते थे। और जब कभी वह घर के शौचालय को गंदा देखते तो स्वयं उसकी सफाई कर देते। अब लोग उन्हें सफाई करने वाला कहकर बुलाने लगे। जब कभी उन्हें कोई सफाई करने वाला कहकर पुकारता तो उनको बड़ा मजा आता। कस्तूरबाई अपने पति के नए नए प्रयोगों से अक्सर परेशान हो जाती। एक बार गांधी जी के मित्र उनके घर में ठहरे। जब वे शौचालय होकर आए तो गांधी जी ने कस्तूरबाई से कहा कि वे शौचालय साफ कर दें। कस्तूरबाई चिढ़ गई, बोली, मैं नहीं साफ करूंगी। गांधी जी ने उनका हाथ पकड़ा और चिल्लाकर बोले, मेरा घर छोड़कर अभी चली जाओ। कस्तूरबाई ने पति की ओर देखा और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह बोली, आप मुझे विदेश में घर से निकाल रहे हैं जहां मुझे कोई आसरा देने वाला भी नहीं है। गांधी जी का क्रोध ठंडा हो गया। उन्होंने कस्तूरबाई से क्षमा मांगी। इसके बाद से वे कभी किसी से बुरी तरह नहीं बोले। गांधी जी ने गंभीरता से सोचा कि पहले उन्हें अपने पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने भोजन नियंत्रण से की। उन्होंने चाय व कॉफी छोड़ दी। वे जब तक उपवास रखने लगे और उपवास में पानी भी ना पीते। किसी किसी दिन वे केवल फल ही खाकर रह जाते। उन्हें विश्वास हो गया था कि प्राकृतिक चिकित्सा सब रोगों का इलाज है। एक बार जब वे बीमार पड़े, उन्होंने केवल प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग किया। इसमें जल चिकित्सा, सूर्य स्नान और उपवास से उपचार होता था। वे स्वस्थ हो गए। तो श्रोताओं, गांधी चर्चा में आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

ये आकाशवाणी काशी विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:50 हुए हैं। मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार द्वीपो के कई भागों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। जन सेवाओं को सूचित किया जाता है कि कल द्वीपो के एक दो भागों में बिजली चमकने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान सागर और उसके आसपास के इलाकों में वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। समुद्र काफी अशांत रहेगा। ऐसी स्थिति में मछुआरों को आज से लेकर 31 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। और अब श्रोताओं, सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सवेरे 7 बजे जन सूचनाएं प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा। सवेरे 7:05 सवेरे 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागनी। वहीं विविध भारती मुंबई से प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान में कानून की बात कार्यक्रम के अंतर्गत आप मध्यस्थता विवादों का शांतिपूर्ण समाधान इस विषय पर एडवोकेट मोनिशा गांगुली से ली गई पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता सुनेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर फनकार होंगे शब्बीर कुमार, पंकज उदास, आशा भोसले और अशोक खोसला। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में वीणा सहस्त्रबुद्धि का कर्नाटक शैली में गायन प्रसारित किया जाएगा। दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। निकोबारी कार्यक्रम का समय रहेगा दिन के 11:30 जिसमें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा दिवस पर चर्चा और लोकगीत सुनवाए जाएंगे। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में रक्षाबंधन पर चर्चा की जाएगी। मलयालम कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 12:30 पर श्री नारायण गुरु की जयंती पर वार्ता सुनवाई जाएगी। महफिले कव्वाली कार्यक्रम में दोपहर 1:10 पर कव्वाल होंगे मास्टर हबीब कव्वाल नियाजी, जानी बाबू कव्वाल व साथी। व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का भरपूर लुत्फ लीजिए कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ ही प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स और 3:30 पर सुनवाया जाएगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत हम करेंगे शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम के साथ, जिसमें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा दिवस पर चर्चा और विश्व संस्कृति दिवस पर चर्चा सुनवाई जाएगी। बांग्ला कार्यक्रम में शाम 5:30 पर रक्षाबंधन और विश्व संस्कृति दिवस पर आप चर्चा सुनेंगे। किसान वाणी कार्यक्रम में शाम 6 बजे स्नेह सम्मान सुरक्षा का पर्व रक्षाबंधन इस विषय पर मिलनदीप कौर से आप वार्ता सुनेंगे। शाम 6:30 पर समाचार तरंगणी। संध्या 7:20 पर फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युवाणी कार्यक्रम के तहत फोन इन प्रोग्राम आप सुन पाएंगे हेलो फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रेशम की डोर। रात्रि 8 बजे चित्रपट संगीत, रात्रि 10 बजे फरमाशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर करंट अफेयर्स कार्यक्रम होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, तथा इसी बीच रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत।

आकाशवाणी का ये शिवीजीपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और इसके आसपास के इलाकों में 2.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 95% तथा न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 29.3 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:09 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:32। एयर इंडिया से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचने की संभावना है। यही विमान श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी वापसी उड़ान भरेगा दिन के 11:40 पर। अभी आप एयर इंडिया से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार उड़ान संबंधी सूचना सुन रहे थे। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज सवेरे 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान में कानून की बात कार्यक्रम के अंतर्गत आप मध्यस्थता विवादों का शांतिपूर्ण समाधान इस विषय पर एडवोकेट मोनिशा गांगुली से ली गई पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता सुनेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर फनकार होंगे शब्बीर कुमार, पंकज उदास, आशा भोसले और अशोक खोसला। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में वीणा सहस्त्रबुद्धे का कर्नाटक शैली में गायन प्रसारित किया जाएगा। दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे सवेरे 10 बजे। महफिली कव्वाली कार्यक्रम में दोपहर 1:10 पर कव्वाल होंगे मास्टर हबीब कव्वाल नियाजी, जानी बाबू कव्वाल और साथी। व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का भरपूर लुत्फ लीजिए दोपहर 1:30 पर।

आज संध्या 7:30 पर युवाणी के तहत रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। रेशम की डोर। इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई।

0: मुख्य समाचार। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी आज रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जेम्स ऑफ इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन श्री विजयपुरम विशेष स्पोर्ट्स चैलेंज कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। परिवहन विभाग ने भारी वाहन मालिकों से मोटर वाहन अधिनियम का पालन करने की अपील की है। और प्रशासन ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह औद्योगिक संपदा आवंटन और प्रबंधन नीति 2025 मसौदा संशोधन पर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुबह के समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश के सात द्वीप समूह में भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा और मदद करने का वादा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस त्यौहार पर हर नागरिक से परिवार और समुदायों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लेने और इसी भावना के साथ विकसित भारत की ओर आगे बढ़ने का आग्रह किया। रक्षाबंधन के अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डीके जोशी ने द्वीपवासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्षाबंधन एक ऐसा प्रिय त्यौहार है जो भाइयों और बहनों के बीच प्रेम, स्नेह और परस्पर विश्वास के पवित्र बंधन का उत्सव मनाता है। भातुबस्ती स्कूल मैदान में आयोजित अंतर स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप फाइनल के दौरान जेम्स ऑफ इंडिया 2026 अभियान को बढ़ावा देते हुए शिक्षा विभाग ने छात्रों को वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी प्रतिभा और उपलब्धियों का प्रदर्शन कर राष्ट्रीय चुनौती में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में द्वीप समूह तथा अरुणाचल प्रदेश के लिए जेम्स ऑफ इंडिया अभियान की नोडल अधिकारी नीरजा गुप्ता, सहायक पर्यवेक्षक एके गैन, शिक्षकों, खिलाड़ियों और छात्रों ने भाग लिया। इस पहल के हिस्से के रूप में दूरदर्शन का श्री विजयपुरम केंद्र जल्द ही जेम्स ऑफ इंडिया 2026 अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष स्पोर्ट्स चैलेंज कार्यक्रम शुरू करेगा। यह कार्यक्रम वेव्स ओटीटी के माध्यम से खेल और डिजिटल स्टोरी टेलिंग में भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए द्वीप समूह के युवा एथलीटों की खेल प्रतिभा, प्रेरणादायक यात्राओं और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करेगा। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य ईकेवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने में फ्रारगंज तहसील में निवासियों को पेश आ रही कठिनाइयों का समाधान करने के लिए दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष पी उमर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में नागरिक आपूर्ति विभाग निदेशक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अधिकारियों, संबंधित क्षेत्र के पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और मेसर्स प्रिया इंडियन गैस एजेंसी के प्रतिनिधि ने भाग लिया। बैठक में उपभोक्ताओं को ईकेवाईसी के लिए जंगलीघाट स्थित कार्यालय आने में असुविधा को देखते हुए निर्णय लिया गया कि उपभोक्ता IOC की वेबसाइट पर जाकर या अपने अपने क्षेत्रों में स्थित CSE के माध्यम से स्वयं ईकेवाईसी कर सकते हैं। ऑनलाइन सिलेंडर बुक करने वाले उपभोक्ताओं के लिए LPG बुक पर मोहर लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑफलाइन बुकिंग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एजेंसी द्वारा मोहर लगाने की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में LPG सिलेंडरों का वितरण शाम 6 बजे तक पूरा करने का भी निर्णय लिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं।
1: गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलिघट लेकर आया है एक नई शुरुआत। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अंडमान, फुल टाइम न्यूरोलॉजी एंड फुल टाइम गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक स्पेशलिस्ट सर्विसेज आर नाउ अवेलेबल अंडर वन रूफ। अब माइग्रेन, लकवा, मिर्गी, चक्कर, नसों की बीमारियां, याददाश्त की समस्याएं, EEG, EMG और NCV जैसी उन्नत जांचों के साथ साथ गर्भावस्था की

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: देखभाल, बांझपन, इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, महिलाओं की सभी सामान्य एवं जटिल समस्याओं का विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध है। स्वास्थ्य से समझौता न करें। विजिट हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, जुंगलीघाट। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल करें 9933219444।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। परिवहन विभाग ने कहा कि कंटेनर और भारी मशीनरी, स्टील उत्पाद, पाइप, लकड़ी तथा निर्माण सामग्री सहित अन्य भारी माल ले जाने वाले भारी माल वाहनों को भार की उचित सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना संचालित किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत पदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंटेनर और अन्य भारी माल ले जाने वाले भारी माल वाहनों के सभी मालिकों, ऑपरेटरों ड्राइवरों को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रत्येक यात्रा शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि कंटेनर और माल ठीक से बंधे हुए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार मालवाहक वाहनों के चालकों के पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र, कंटेनरों को वाहन पर ठीक से रखे जाने, वाहन के संतुलन को बनाए रखने के लिए माल को समान रूप से वितरित करने और मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के तहत वाहन का वजन निर्धारित सीमाओं के भीतर रखने को कहा गया है। विभाग ने सभी संबंधित मालिकों, ऑपरेटरों और ड्राइवरों को मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उल्लंघनकर्ताओं पर मोटर वाहन अधिनियम धारा 86 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन और पुलिस विभाग की प्रवर्तन शाखा रूटीन चेकिंग और प्रवर्तन अभियानों के दौरान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगी। उद्योग निदेशालय की ओर से उद्यमियों और उद्यमों को बुनियादी सुविधाओं के साथ औद्योगिक शेड प्रदान करने के लिए द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक संपदा स्थापित की गई है। यह 6 औद्योगिक संपदाएं डॉलीगंज, ग्यारहचरमा, मीठाखाड़ी, हटबे, बकुलतला और कैम्बलबे में उपलब्ध है। इन औद्योगिक संपदाओं में शेड्स का आवंटन पारदर्शी तरीके से करने और किए गए आवंटन का प्रबंधन करने के लिए प्रशासन ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह औद्योगिक संपदा आवंटन और प्रबंधन नीति 2025 अधिसूचित की है। इसके अलावा नीति को अधिक कुशल बनाने के लिए नीति के कुछ खंडों में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। इस दिशा में एक मसौदा संशोधन अधिसूचना तैयार की गई है, जिसे प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रशासन ने प्रस्तावित मसौदा संशोधन पर आम जनता, हितधारकों, उद्यमियों से 23 सितंबर तक टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। टिप्पणियां और सुझाव उद्योग निदेशालय के ईमेल पर भी भेजे जा सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम की ओर से आज हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय है हर्निया, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। यह फोन इन कार्यक्रम शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम में जीबी पंत अस्पताल के सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर साजी वर्गीस विशेषज्ञ के रूप में दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। दर्शक फोन नंबर 2447454 या 2456662 डायल कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी आज रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जेम्स ऑफ इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन श्री विजयपुरम विशेष स्पोर्ट्स चैलेंज कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। परिवहन विभाग ने भारी वाहन मालिकों से मोटर वाहन अधिनियम का पालन करने की अपील की है और प्रशासन ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह औद्योगिक संपदा आवंटन और प्रबंधन नीति 2025 मसौदा संशोधन पर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मात्रा में जिंक की गोली जरूर दें 14 दिन तक। अधिक जानकारी के लिए आशा या आंगनबाड़ी बहन से संपर्क करें।
1: जिंक की गोली 14 दिन।
2: माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब पेश है फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागनी।

आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। नमस्कार श्रोताओं, देशरागनी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। श्रोताओं, हम सभी को अपने देश से प्यार है। हम कहीं भी रहे, दुनिया के किसी कोने में क्यों ना रहे, लेकिन हमारा दिल है हिंदुस्तानी। बदलता हुआ समय, प्रगति और नई सोच की रोशनी दूर दूर तक फैल रही है। पूर्व की परंपराओं और पश्चिम की आधुनिकता के मेल से एक नई उम्मीद और विश्वास उज्जवल भविष्य का मार्ग बना रहा है।

श्रोताओं, हमारी जो देश की युवा पीढ़ी है, उन्होंने इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाने में कोई कमी नहीं रखी। इस देश के युवाओं और देशवासियों में आगे बढ़ने, चुनौतियों का सामना करने और भारत का नाम रोशन करने का उत्साह दिखाई देता है। हम सब उनके संघर्ष और उपलब्धियों को सलाम करते हैं।

श्रोताओं, हमारा भारत अनेक रंगों, संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं को अपने भीतर समेटे एक खूबसूरत एहसास है। हमारी यही विविधता हमारी सबसे बड़ी पहचान है। इसी खूबसूरत भावना को आवाज देता है एक बेहद जोशीला और देश प्रेम से भरपूर ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम।

0: सूरज की रोशनी से रोशन हो आपका हर पल, खुशियों से महकता रहे आपका आज और कल, दिल में उम्मीद, चेहरे पर प्यारी मुस्कान रहे, हर सुबह आपकी जिंदगी का खूबसूरत अध्याय बने। नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। मैं अनीता आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं कानून की बात। कार्यक्रम के तहत एडवोकेट मोनिशा गांगुली से ली गई ये पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता, विषय है मध्यस्थता, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान।
1: कानून की बात कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब किसी न किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। कई लोग अपने विवाद को लेकर सीधे अदालत का रुख करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता भी है जहां विवाद का समाधान जल्दी हो, कम खर्च में हो और सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते भी बने रहें? इन्हीं सवालों का जवाब है मध्यस्थता, यानी बातचीत और आपसी सहमति से विवाद का समाधान। आज कानून की बात कार्यक्रम में हम बातें करेंगे मध्यस्थता, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान विषय पर। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं एडवोकेट मोनिशा गांगुली। मोनिशा गांगुली जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इस कार्यक्रम में।
2: शुक्रिया। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, मीडिएशन, मध्यस्थता, यह है क्या?
3: जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम मोनिशा गांगुली है। पिछले 26 साल से मैं पोर्ट ब्लेयर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूं और मीडिएशन के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग किया है, जो 2017 में ट्रेनिंग किया है। तकरीबन 8 साल से हम लोग जो है मीडिएशन का काम कर रहे हैं। अभी बताती हूँ कि मीडिएशन क्या है। अगर एक सरल भाषा में लिया जाए, जहाँ पे हम लोग दोनों पार्टी को सुनते हैं वॉलेंट्री, इसमें जो है एडवोकेट्स नहीं रहता है, वो अपना प्रॉब्लम्स को वॉलेंट्री बोलते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या डिस्प्यूट है, और मीडिएटर जो है थर्ड पार्टी है जो इस चीज़ को दोनों पार्टीज के बीच में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के बाद ही इसका एक रिपोर्ट बनाता है। ये है मध्यस्थता, जो दोनों पार्टी को पूरी तरह से आराम से बैठ के सुना जाता है। हम लोग जो है थर्ड पार्टी है, यानी कि मीडिएटर, इसमें हम लोग दोनों पार्टी का पूरा प्रॉब्लम्स को बैठ के सुनते हैं। इनका तीन स्टेजेस है। सबसे पहले जो स्टेज है, हम लोग पार्टी को बुलाते हैं और उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और उनसे सिंगल सिटिंग्स करते हैं। सिंगल सिटिंग्स में जो है हम लोग पार्टीज को पूछते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है और उनको क्या चाहिए। कई बार देखा गया है कि जैसे कि डाइवोर्स केसेस, जहां पे लेडीज जो है अनकंफर्टेबल होती है अपना हस्बैंड के साथ बात करने के लिए, सामने आने के लिए, तो हम लोग सिंगल सेशंस पहले लेते हैं ताकि वो कंफर्टेबल हो। उसको पहले हम लोग कंफर्टेबल करते हैं, तो सिंगल सेशंस में हम लोग को ये पता चल जाता है कि हस्बैंड क्या चाहता है और वाइफ क्या चाहती है। उसके बाद अगर देखते हैं हम लोग कि इसमें आगे कुछ और किया जा सकता है, तो ही हम लोग आगे जो है जॉइंट सेशंस करते हैं। जॉइंट सेशंस होने के बाद उसके बाद दोनों का फिर से सिंगल सिटिंग करवाते हैं कि उनको क्या चाहिए इस केसेस में। अगर हम लोग, अगर डाइवोर्स केस ही को बताया जाए, तो डाइवोर्स केस

0: कनेक्टेड काफी केसेस रहता है, जैसे कि अगर हस्बैंड ने डाइवोर्स केस फाइल किया है तो वाइफ जो है इमीडिएटली 125 का केस फाइल करती है मेंटेनेंस के लिए, साथ में वो डीवी एक्ट का केस भी फाइल कर सकती है, हो सकता है कि 498 केसेस भी हो। अभी हम लोग का काम ये रहता है कि हम लोग को हो सकता है कि एक ही केस मीडिएशन में रेफर हुआ हो, लेकिन हम लोग जो है इन चारों केसेस को एक साथ लेके आके सेटल कर सकते हैं, लेकिन ये सेटलमेंट जो है दोनों पार्टीज का एग्रीमेंट के बाद ही होता है। दोनों पार्टी इसमें एग्री होना कि जो है हम लोग इस चीज के लिए वॉलंटरी एग्री है, हम लोग किसी को भी फोर्स नहीं करते,
1: दबाव में नहीं,
0: दबाव नहीं करते हैं।
1: तो मोनिशा जी, कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में आप दोनों पार्टी से अलग अलग मिलकर बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं,
0: अलग अलग से जानते हैं दोनों का पार्टी, उनका प्रॉब्लम्स क्या है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है, उनको क्या चाहिए, उनको डाइवर्स ही चाहिए या फिर ऐसा भी कई बार देखा गया कि छोटी सी समस्या होती है जहाँ पे हम लोग ये सुलझा लेते हैं कि साथ में भी भेज देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वाइफ को उनके इन-लॉज से प्रॉब्लम होता है, जिस वजह से हम लोग एक छोटा सा सोल्यूशन निकालते कि ठीक है आप एक काम करो, एक रेंटेड हाउस ले लो, एक रेंटेड हाउस में आप अलग से पास में रहो। हम ये नहीं बोलते उस लोग को कि आप अपने माँ बाप को मत देखो, हस्बैंड को ये नहीं बोलते कि माँ बाप को मत देखिए, आप माँ बाप को भी जरूर देखिए, लेकिन आपने जब शादी किया है तो उसका एक अलग सोल्यूशन भी निकालिए। मीडिएशन का मतलब ये है जो 10 साल केसेस चलता है उसको जो है हम लोग 90 डेज टाइम दिया जाता है, लेकिन हम लोग एक या दो बार में ही इस केस को सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर उससे आगे भी टाइम लगा तो हम लोग लेते हैं। ये केसेस जो है कोई भी टाइम आ सकता है, जैसे अगर सपोज करिए 138 केस एनआई एक्ट का फाइल किया गया, शुरू में ही उस केस को हम लोग के पास आ गया, चेक बाउंस केस जिसे हम लोग बोलते हैं, जो शुरू में ही हम लोग के पास आ गया, फर्स्ट स्टेज हुआ, केस फाइल हुआ, इमीडिएटली हम लोग के पास आ गया। चेक बाउंस में सपोज करिए 1 लाख रुपीस चेक बाउंस है, अभी जो एक्यूज्ड है उसकी परिस्थिति नहीं है कि वो एक बार में दे सके, लेकिन हम लोग उसको जो 10 साल चलने वाला था और वो 10 साल के बाद उसको अमाउंट को देने वाला था, इसमें दोनों पार्टीज को फायदा है क्योंकि मीडिएटर जो है न्यूट्रल है, दोनों के लिए ही फायदेमंद का काम करता है। अभी कंप्लेनेंट जो है इसमें वो 10 साल तक एडवोकेट को भी फीस दे रहा था, अपना भी हैरेसमेंट ले रहा था, अभी हम लोग ये करते हैं कि उसी को अक्यूज्ड पैसा नहीं दे पा रहा तो इंस्टॉलमेंट बेसिस में हम लोग उसको जो है केस को खत्म करते हैं कि ठीक है तुम एक काम करो 1 लाख को 5 इंस्टॉलमेंट्स में, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट्स, जैसे भी आपको सुविधा होता है वो सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स में आप इसको पैसा को दे दीजिए।
1: जी जी, एडवोकेट मोनिशा ये बताएं कि मीडिएशन की जो प्रक्रिया है इसमें समय कितना लगता है?
0: इसमें एक्चुअली हम लोग को जब कोर्ट से रेफर होता है केसेस तो 90 डेज का टाइम दिया जाता है, उसमें कई बार एक हफ्ता लगाते हैं केस को, नोटिस देते हैं केस को लगाते हैं। मीडिएशन में केसेस एक दिन में भी कभी कभी ख़त्म हो जाता है, बहुत बार मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है जहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद पार्टीज को समझ में आया या फिर उनके माँ बाप को समझ में आया या फिर प्रॉपर्टीज़ केसेस है उनको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हम लोग को स्पॉट इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इसमें, लेकिन कुछ भी हो हम लोग बिफोर 1 मंथ और 2 मंथ्स जो है ख़त्म कर देते हैं। मोस्टली 90 डेज का टाइम दिया जाता है लेकिन 15-20 दिन में केस खत्म हो जाता है।
1: अब ये बताएं कि मध्यस्थता में लिया गया जो निर्णय है कानूनी रूप से मान्य होता है?
0: जी जी जी, पहले ये एक्ट आया नहीं था, जब 2017 में हम लोग ने ट्रेनिंग किया था तब ये एक्ट नहीं आया था, अभी अमेंडमेंट होकर 2023 में ये एक्ट आ गया है। अभी जो हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं वो रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट रहता है, उसको चैलेंज नहीं किया जाता है। चैलेंज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों पार्टी अपना रजामंदी से जो है रिपोर्ट पे साइन करता है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है और बार बार समझाया जाता है कि आप लोग अपना मर्जी से जो है इस चीज़ के लिए एग्री हैं, चाहे वो कोई तरह का भी केसेस हो, चाहे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, चाहे एनआई एक्ट हो या डाइवोर्स केस हो, किसी तरह का भी केसेस।
1: कई केसेस आपने हैंडल भी किया होगा तो इसमें कितना फ़ायदा हुआ है, लोगों को मामला सुलझ पाया है?
0: जी जी जी, एक्चुअली हम लोग देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होता है इसमें, सिर्फ पार्टीज को ही फ़ायदा नहीं होता, जो कोर्ट का प्रोसीडिंग्स है अभी लाखों का तादाद में जो केसेस है वो पेंडिंग्स है हर कोर्ट में, चाहे आप लोअर कोर्ट ले लीजिए, चाहे आप सेशंस ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए या हाई कोर्ट तक चले जाइए, आप बहुत ज़्यादा केसेस जो है पेंडिंग है। मीडिएशन सेंटर या ADR सेंटर जो बोल रहे हैं हम लोग, उसका काम ही यही है कि जो बर्डन ऑफ केसेस है उसको कम किया जाए। बेनिफिट्स दोनों को है, बेनिफिट्स पार्टीज को भी है, बेनिफिट्स कोर्ट को भी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में सुन के उसको हम लोग ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। बोल सकते हैं कि हम लोग 70-80% फुल सक्सेसफुल है।
1: अब ये बताएं कि लोक अदालत और मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता, इसमें अंतर क्या है?
0: जी, मेरे पास बहुत पार्टीज आते हैं जो ये बोलते हैं कि मैडम मेरा केस तो लोक अदालत में भी हो जा सकता था, मीडिएशन में क्यों आ गया? तो लोक अदालत जो है, मैं खुद कई बार लोक अदालत में मेंबर बन के बैठ चुकी हूँ, लोक अदालत जो है 3 मेंबर्स तो बैठते हैं, एक जज, एक सोशल वर्कर और

0: एक वकील। लोक अदालत साल में एक या दो बारी आता है और उसमें चार या पांच कोर्ट रहते हैं। एक कोर्ट में कम से कम 100 से ज्यादा मैटर्स को फिक्स किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, लोक अदालत में उतना डिटेल्स में जो है प्रॉब्लम्स को सुना नहीं जाता, जबकि मीडिएशन में एक मैटर को हम लोग जो है कई बार सुनते हैं, कोशिश करते हैं सेटल करने का। हम लोग लेवल बेस्ट ट्राई करते हैं कि ये मैटर सॉल्व हो सके। अगर सॉल्व नहीं होता फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम लोग जो है पार्टीज को भेज देते हैं फेल करके, मैटर वहीं पे स्टॉप हो जाता है और जहां था कोर्ट में वहीं से स्टार्ट होता है।
1: हर प्रकार के मामले मध्यस्थता के द्वारा सुलझाए जा सकते हैं
0: जी,
1: या कुछ स्पेशल केसेस आते हैं?
0: नहीं, कुछ स्पेशल केसेस नहीं है, हर तरह का मैटर्स ही आता है इसमें। बस खाली जो स्टेट रहता है, जैसे स्टेट वर्सेस कोई रहता है, जो क्रिमिनल केसेस रहते हैं, जैसे आप मर्डर केस समझ लीजिए, रेप केस समझ लीजिए, जो बड़ा केसेस सेशंस मैटर रहता है, वो तरह का केसेस जो है मीडिएशन में नहीं आता। जहाँ पे दोनों पार्टीज आ सकते हैं वो तरह का केसेस आता है।
1: ये जो प्रक्रिया होती है मीडिएशन में, कॉन्फिडेंशियल होते हैं?
0: जी जी, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होते हैं। इसमें अगर सेटल होता है मैटर, वॉलेंट्री अगर दोनों पार्टी सेटल कर रहे हैं मैटर को, एक रिपोर्ट बन रहा है, तो वो रिपोर्ट को लिखा जाता है। इन केस अगर दोनों पार्टी रेडी ही नहीं है मैटर को कुछ सॉल्व करने के लिए या फिर मीडिएशन में सेटल करने के लिए, तो जो भी उन्होंने मेरे को बोला है या किसी भी मीडिएटर को बोला है वो कॉन्फिडेंशियल रहता है। वो बिल्कुल भी किसी ना उनके कंसर्न्ड एडवोकेट को बोला जाता है, ना ही कोर्ट को बोला जाता है, ना ही कोई तरह का रिपोर्ट बनता है। रिपोर्ट अगर दोनों पार्टी रेडी नहीं है, सिर्फ फेल का रिपोर्ट बनता है, जस्ट ओनली फेल्ड।
1: जो केसेस कोर्ट में चल रहे होते हैं वो मीडिएशन के लिए भेजे जाते हैं
0: जी।
1: तो अभी बताएं कि किस तरह से मीडिएशन के पास पहुंचता है वो केस?
0: अभी एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है कि सभी मैटर्स एक बार मीडिएशन में जाकर आए, चाहे वो सेटल हो या ना हो, ताकि पार्टीज जो है अपना बोल सके बात को, क्योंकि कोर्ट में तो दोनों पार्टीज बैठने का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन मीडिएशन में तो दोनों पार्टीज बैठता है। तो कोर्ट से मैटर को रेफर किया जाता है, रेफर करने के बाद दोनों पार्टीज को भी बुलाया जाता है कि क्या आपका मैटर मीडिएशन में रेफर किया जाए। जब पार्टीज हाँ करते हैं तो कंसर्न्ड एडवोकेट जो है एक मीडिएशन पेपर में साइन करते हैं कि हम लोग का मैटर जो है मीडिएशन में जा रहा है। उसके बाद हम लोग एक 10 जन है मीडिएटर, हम लोग के पास अलग अलग करके मैटर्स आता है।
1: जी जी, यहाँ किस तरह के केसेस आते हैं मीडिएशन के लिए?
0: नहीं, नॉर्मली सभी तरह का आते हैं, जैसे डाइवोर्स केसेस हो गया, एनआई एक्ट केसेस हो गया, प्रॉपर्टी मैटर्स हो गया, इस तरह के सभी केसेस हम लोग के पास आते हैं।
1: तो अब अंत में हमारे श्रोताओं को आप मध्यस्थता के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मेरा ये कहना है कि पार्टीज को, सभी को जानना चाहिए कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स अपार्ट फ्रॉम कोर्ट अल्टरनेटिव क्या है। जैसे कि कोर्ट में बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि इतना साल तक केस चले जा रहे हैं, लेकिन अगर उस लोग मीडिएशन सेंटर में आते हैं, एक या दो हेयरिंग में भी कभी कभी केस खत्म हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि उनको समझना चाहिए, आना चाहिए मीडिएशन में, मैटर्स को रेफर करना चाहिए, और उन लोग को क्या है मीडिएशन, क्या है उनके राइट्स, कैसे रेमेडीज है, कैसे केसेस को इजीली, लॉन्ग पेंडिंग केसेस को मीडिएशन के द्वारा आसानी से बैठ के सुलझाया जा सकता है शांतिपूर्वक। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो है कोई फीस नहीं देना है। आप जो है मीडिएशन सेंटर में आएंगे और कितने भी बार हम लोग हियरिंग करें, ये जो है फ्री है।
1: तो श्रोताओं, मध्यस्थता हम कह सकते हैं कि समझदारी का नाम है
0: जी,
1: और समझदारी से हर विवाद का समाधान हो सकता है। तो आज हमारे साथ हैं एडवोकेट मोनिशा गांगुली जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू वेरी मच।

0: श्रोताओं, अभी आप कानून की बात कार्यक्रम के तहत मध्यस्थता विवादों का शांतिपूर्ण समाधान इस विषय पर एडवोकेट मोनिशा गांगुली से ली गई ये पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता सुन रहे थे। इनसे भेंट कर रही थी जयशीला।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video.

श्रोताओं, अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। श्रोताओं, जिंदगी टेंशन फ्री रहे और होठों पर मुस्कान हमेशा बनी रहे, और क्या चाहिए हमें? तो चलिए श्रोताओं, आज के दिन को कुछ खास बनाते हैं। श्रोताओं, आज रक्षाबंधन है, जो कि भाई बहन के प्रेम, विश्वास और स्नेह का खूबसूरत पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके सुखी और सुरक्षित जीवन की कामना करती है। वहीं दूसरी ओर भाई भी बहन की हर परिस्थिति में साथ देने का संकल्प लेता है। लेकिन आज राखी का अर्थ सिर्फ भाई की कलाई पर धागा बांधना नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं, सम्मान और जिम्मेदारियों की रक्षा करना भी है। यह पर्व हमें बताता है कि सच्चे रिश्ते प्रेम, विश्वास और परस्पर सहयोग से मजबूत होते हैं। आइए इस रक्षाबंधन हम सिर्फ अपने परिवार के रिश्तों की नहीं, बल्कि अपने समाज, अपनी प्रकृति और अपनी खूबसूरत धरोहर की भी रक्षा करने का संकल्प लें।

श्रोताओं, अभी आप सुमन कल्याणपुर के स्वर में रेशम की डोरी फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। श्रोताओं, आज हम अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक रूप से कॉमिक्स पढ़ने का दिवस भी मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य कॉमिक्स जैसी लोकप्रिय कला और साहित्यिक शैली को बढ़ावा देना है। कॉमिक सिर्फ बच्चों के मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए ज्ञान, हास्य और प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर लोग सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, पुस्तकालय, कैफे या बस ट्रेन में बैठकर कॉमिक्स पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम सभी को पढ़ने की आदत बनाना चाहिए, इससे ज्ञान के साथ साथ हमारी मानसिक शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है।

श्रोता, उम्मीद है आज का यह कार्यक्रम आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में एक अच्छी सोच जरूर छोड़ गया होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप गुड मॉर्निंग अनुमान कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
1: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261107। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री

0: जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।
2: सत्तावन दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरणी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
1: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
4: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: केरल में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरल में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती हैं कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
6: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण

0: जाते हैं। और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
1: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $200,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोट रानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो, लोकसत्ते की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
3: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस: डेथ टोल इन डेवस्टेटिंग नेपाल टिबेट फ्लैश फ्लड्स राइजेस टू 392, व्हाइल 1,468 पीपल रिमेन मिसिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। Center steps up efforts to bring back Indians stranded in Nepal. World's largest financial inclusion initiative, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, completes 12 years today. Festival of Raksha Bandhan.

श्रोताओं, आज सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार हैं शब्बीर कुमार, पंकज उदास, आशा भोसले और अशोक खोसला। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं शब्बीर कुमार के गाए इस गजल के साथ, कलाम पयाम सैयदी का।

अभी आप शबीर कुमार को सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं कैसर उल साफरी की लिखी ये गीत, आवाज पंकज उदास की।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत। इस गीत को लिखा है नीता फाजली ने।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं डॉक्टर राही मासूम रजा का लिखा ये गीत। इस गीत को गाया है अशोक खोसला ने।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार थे शब्बीर कुमार, पंकज उदास, आशा भोसले और अशोक खोसला।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है काजल फिल्म से। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने। साहिल लुधियानवी की लिखी रचना है व धुन बनाई है रवि ने।

0: HIV/AIDS से जुड़े सभी सवालों के लिए आज ही टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं राजेंद्र चौधरी का लिखा और हेमराज का संगीतबद्ध किया हुआ अनोखा इंसान फिल्म का गीत। गाने वाले कलाकार हैं चंद्रानी मुखर्जी, अनवर और भूपेश हुसैन लाल।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आजा सनम फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और मनु ने। गौहर कानपुरी की लिखी रचना है व धुन बनाई है कविता पौडवाल ने।

श्रोताओं, अभी आप असली नकली फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल को सुरों में ढाला था शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लागी नहीं छूटे राम फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। मजरू की रचना है व धुन बनाई है चित्रगुप्त ने।

श्रोताओं, अभी आप साजन फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी, गीतकार आनंद बख्शी तथा संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए साजन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं पर समाप्त होता है।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज सवेरे 10 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग, संदेश टू सोल्जर्स। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का समय रहेगा दिन के 11 बजे।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या,
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको वीणा सहस्त्रबुद्धे का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनवाने जा रहे हैं। इनके साथ तबले पर विश्वनाथ शिरोधर, हारमोनियम पर सीम शिरोधर और तानपुरा पर जयंती सहस्त्रबुद्धे व स्वाति ने संगति की है। तो लीजिए सुनिए इनका गाया राग कोमल ऋषभ असावरी।

0: अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के तहत वीणा सहस्त्रबुद्धे का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

बहुत स्वागत है आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में। ये एक ऐसा खास कार्यक्रम है जो वर्षों से हमारे जो जवान हैं उनकी वीरता, उनके अनुशासन, उनके समर्पण, उनके त्याग की कहानियां आपके बीच लेकर के आता रहता है। उन्हीं की जुबानी आप सुनते हैं उनकी कहानी।

लेकिन आज हम आपकी आवाज़, आपके दिल की आवाज़ उन सीधे उन सैनिकों तक पहुंचाएंगे जो इस समय शायद किसी बर्फीली चौकी पर हैं, किसी तपती सीमा पर हों, किसी जहाज पर, समुद्री जहाज पर, या किसी ऑपरेशन के बीच खड़े हैं। आज का संदेश टू सोल्जर्स पूरी तरह समर्पित है आपके संदेश, आपकी दुआओं, आपके गर्व की। और गर्व की बातें जो उनकी होती हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, इसी अभिमान की मैं बात कर रही हूँ।

और हमारे सैनिक अपने परिवार से महीनों महीनों बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हमारी ओर से एक छोटा सा संदेश जब पहुंचता है तो शायद उनका हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी तो एक सैनिक ने कहा था कि सरहद पर सबसे मुश्किल रातें तब आसान होती हैं जब लगता है ना कि देश वाले हमें याद कर रहे हैं। ये बात सच है, क्योंकि देशवासियों का जो प्यार है, भरोसा है, उससे भी लड़ते हैं वो। तभी तो सियाचिन में तैनात एक जवान ने लिखा था ये संदेश कि माँ, यहाँ तापमान -30 है, लेकिन जब कोई बच्चा पत्र लिखता है, संदेश भेजता है कि भैया आप हो इसलिए हम सुरक्षित हैं, तो मेरे ना दिल का तापमान गर्म हो जाता है। बस यही भाव, यही रिश्ता हम जोड़ना चाहते हैं। 9868107070 हमारे ये व्हाट्सएप नंबर है और कार्यक्रम में बहुत खास संदेश टू सोल्जर्स।

वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स. इस शो में आज आपके साथ हूं मैं शैली भाषांजलि. अमूमन हमारे साथ होते हैं देश के जाबाज, जो रूबरू हमारी बातचीत होती है उनसे आप सुनते हैं और गर्व करते हैं. लेकिन आज आपका गर्व पहुंचाने का काम मैं कर रही हूं, सूत्रधार हूं. 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो आपका आपके दिल का संदेश है. जो भी आप महसूस करते हैं ज़रूर लिखिएगा. युद्ध के मैदान में देश की रक्षा करने वाले हमारे सशस्त्र बल मुश्किल की हर घड़ी में तो साथ खड़ा ही दिखे थे. लेकिन सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बाढ़ हो, भूकंप हो, प्राकृतिक आपदा हो, राहत, बचाव, पुनर्वास, इन सब में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है. याद दिलाना आवश्यक है, महसूस करना हर पल आवश्यक है. कई बार वे वहां पहुंचते हैं जहां पहुंचना भी एक चुनौती होता है. और मीरा जी लिखती हैं, पता नहीं कहाँ से लेकिन लिखी है, बहुत पते की बात लिखी है कि इंडियन आर्म फोर्सेस, आप सरहदों की रक्षा नहीं करते, हमारे सपनों की भी रक्षा करते हैं.

संदेश टू सोल्जर्स जिस कार्यक्रम में हम दोहराने की ये कोशिश करते हैं, बात आप तक पहुंचाते हैं कि जब भी कोई क्षेत्र आपदा में घिर जाता है तो सशस्त्र बल केवल राहत सामग्री नहीं पहुंचाते बल्कि लोगों को कठिन समय से निकाल करके भी लाते हैं। फिलहाल का समय बहुत ही कठिन है नेपाल के लिए भीषण बाढ़ की वजह से, लेकिन भारत एक तत्पर, एक सजग, एक देश की तरह अपने सशस्त्र बल की मदद से इनका बचाव भी करते हैं, रेस्क्यू भी करते हैं, कई जिंदगियों के लिए उम्मीद भी बन जाते हैं। और हमारे सशस्त्र बल की सेवा केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये हम जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो अभियान है उसमें वे हाथ बढ़ाते हैं और काम करते हैं, क्योंकि वर्दी का अर्थ केवल शक्ति नहीं, अनुशासन, साहस और मानवता सबसे बढ़कर।

बहुत स्वागत है आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है शैली भाषांजलि और आज सोल्जर्स की ही बातें कर सकते हैं, बहुत गर्व के साथ बातें करते हैं। अब जो पूरा देश, जो जो बहनें हैं, अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधने की तैयारी में लगी हुई हैं, लेकिन कुछ भाई अपने घरों से बहुत दूर हैं, देश की सीमाओं पर हैं। किसी बहन की राखी आज पहुंचेगी शायद डाक से उनके पास, किसी की वीडियो कॉल पर बंधेगी और किसी बहन की कलाई खाली होगी, भाई की कलाई खाली होगी, क्योंकि उनका भाई देश की रक्षा में तैनात है। लेकिन सच तो यह है कि सैनिक सिर्फ अपनी बहन की रक्षा नहीं करता, पूरे देश की रक्षा करता है। आज संदेश टू सोल्जर्स में देश के हर वीर जवान को एक राखी, एक अनदेखी राखी, वो धागा आपकी कलाई तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन देश की हर बहन की दुआ आपके साथ है।

वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स. और ये कार्यक्रम तभी पूरा होता है जब आप जुड़ते हैं अपने मैसेजेस के साथ, अपने भाव के साथ. शांताचारा बाडिगर को कोनूर कोकानूरु कोकानूर एम आई राइट? ओके. भाव की तरफ ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे क्षमा चाहूंगी. लेकिन दावा नागरी से लिखते हैं कि कार्यक्रम इसलिए वंडरफुल होता है ना शांताचारा जी, बिकॉज सैनिकों के बारे में होता है. आप जुड़े हैं इस शो के साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारे साथ शंकर जी जुड़े हुए हैं ककरोला द्वारका से, एंड ही सेंडिंग हिज हार्टिएस्ट लव टू द इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द नेशन. एंड बहुत सारी प्यारी बातें, डिवोशन, डेडिकेशन की उनको उनके बारे में लिखी है, एक्सप्रेस की है अपनी फीलिंग्स और सल्यूट करते हैं उनको. यशवंत जी लिखते हैं अपने अपने भाव के साथ. और मंजू भाटिया जी कहती हैं कि हमारी सीमा पर तैनात सभी सैनिकों को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं, अपने हर मिशन में आप कामयाब हो, यही हम चाहते हैं. जी हाँ, रक्षाबंधन एक ऐसा धागा जिस जिसमें विश्वास बंधा है, सुरक्षा का वादा है, वो ये करते हैं. इसलिए आज आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे, आपकी दुआ, आपका गर्व, आपका सम्मान, आपके भाव, आपके शब्द, इसी उद्देश्य से तो ये शो बना है. मेरा नाम है शैली भाषांजलि. सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि आपकी बात को उन तक जोड़ूं और पहुंचाऊं.

आकाशवाणी के इस चैनल में आप जुड़ रहे हैं संदेश टू सोल, जैसे बहुत ही खास दिल के करीब यह कार्यक्रम होता है। हम जानते हैं कि सब लोग अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, कोई धूप में तपकर, कोई छांव में रहकर अपने हिस्से की जमीन कमा रहा है, रोटी कमा रहा है, थकता है, मुस्कुराता है, चलता है, फिर लग जाता है। लेकिन स्पेशली उनकी बात करना चाहूंगी, उन माताओं को नमन करना चाहूंगी जिन्होंने देश को अपने बेटे दिए हैं, उन बहनों को सलाम करना चाहूंगी जो भाई के लौटने का इंतजार करती हैं। स्पेशली जब राखी आती है तो उनके इंतजार में बहुत ही एक तत्परता बन जाती है। उन सैनिकों को प्रणाम करूंगी जिनकी वजह से हम त्यौहार मना पाते हैं, और यही बात कहते हैं अनिल जी, अनिल कुमार, गेंडा खाली, चिलिया घोल, टनकपुर जिला, चंपावत, उत्तराखंड से इन्होंने लिखा है और यही कहा है कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं तो दी है, पर ये भी कहा है कि सुरक्षा के साथ हम कोई भी फेस्टिवल मना सकते हैं उनकी वजह से। हैप्पी राखी, हैप्पी हैप्पी लॉट ऑफ विशेज ही इज रिटन। दिस इज श्री रंगम राजेश फ्रॉम तमिलनाडु। आप सुनिए ये गीत, हम फिर आते हैं। मैसेजेस का सिलसिला यहाँ बन चुका है 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। संदेश टू सोल्जर्स में आप अपने संदेश भेज दीजिए। दिस इज द प्रोग्राम विच रीचेस स्ट्रेट टू द सोल्जर्स एंड द हार्ट्स।

चूंकि ये कार्यक्रम प्राइमरली आपके संदेश, आपके दिल की भावना और आवाज़ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो सिलसिला मैसेजेस का यहाँ है वो आप तक ज़रूर पहुँचाती हूँ। यहाँ पर आनंद मोक्षी ने मुंबई से लिखा है, बहुत शुभकामनाएं दी है रक्षाबंधन की। और ये इन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं कि इन्होंने, यश सिंधे ने लिखी है। इन्होंने लिखा है कि सरहद पर जो खड़े हैं सीना ताने, वही तो इस पावन राखी का असली मान है। जो घर नहीं आ सकते वतन के खातिर, उन भाइयों के लिए दिल से दुआ आती है, बिल्कुल आती है दिल से। रेशम का धागा भले सरहद तक ना पहुंचे, पर हर बहन की दुआ आपको महफूज रखती है। बिल्कुल सही बात है, न जाने कैसे आपके दिल तक पहुंच जाती है। और यही बात यश शिंदे जी ने लिखी है। और हमारे पास मैसेज आया विपिन नेहरा का देहरादून से, एंड ही इज ऑल्सो विशिंग यू नो वॉर्म विशेज ही इज सेंडिंग टू ऑल द सोल्जर्स। और ये शो, अच्छा, बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी, इसी तरह से प्यार से आप जुड़े रहिए हमारे शो से, संदेश टू सोल्जर्स, ये हमारा शो है। सोल्जर्स की ईशान में हमेशा जी करता है कि कुछ ना कुछ बोले। बहुत सारी बातें उन पर लिखी गई हैं, लेकिन ये बात बहुत प्यारी लगती है मुझे। शायद आपने पढ़ा होगा स्कूल में, जानते होंगे इसके बारे में, कि देवों के सिर पे चढ़ जाऊं, भाग्य पे इठलाऊं, ये चाह नहीं है, बस तोड़ लेना वनमाली मुझे, उस पथ पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने।

और इसी के साथ ही हम रसराज जी, प्रीतम जी और राजकुमार संतोषी जी का, जी के मैसेज का बहुत बहुत स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में। और साथ ही बहुत सारे भाव प्रकट होते हैं ना संदेश टू सोल्जर्स के कार्यक्रम में, जब हम आते हैं सूत्रधार के रूप में, आपकी भावनाओं को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर माइक के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं, तो एक अलग भावना में परिपूर्ण हो जाते हैं। वो बर्फीली हवाओं में जो डटे सैनिक हैं, कभी समुद्र की अनदेखी गहराइयों में तिरंगे की शान उसकी रक्षा करने जो जो नेवी के जाबाज हैं, जो आसमान में सरहदों की जो चौकसी कर रहे हैं, एयरफोर्स के जो शूरवीर, जो पायलट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, इन सभी की अनगिनत कहानियां आप तक आती रहेंगी संदेश टू सोल्जर्स के माध्यम से। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जिस तरह से दिल से आप जुड़ते हैं, उस तरह से दिल से, प्यार से, मन से, भाव से, आदर से हम अपने सैनिकों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1360वीं कड़ी।

0: रंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
0: और अजीत का भी प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता उन लोगों का इंतजार करती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब मुश्किल से ज्यादा मेहनत पर ध्यान देने लगते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इतने खूबसूरत विचार को भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी। लिखते हैं,
2: उमंग टीम को पल पल बंदगी करते हैं। विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी जय जोहार। बंदगी जी, जुलाई वाले सप्ताह में गजब का 16वां लघु कथा प्रसंग सुनाया। गौतम बुद्ध की शरण पाकर अंगुलीमाल डाकू का संत बनना, महात्मा गांधी का मितव्ययता प्रसंग, सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, इन सभी संत महापुरुषों का प्रसंग हमें बहुत शिक्षाप्रद और प्रेरणा दिया। इसी तरह नई नई जानकारी मिलती रहे, दिल से धन्यवाद साहेब।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। लिखते हैं, आजकल मैं उमंग कार्यक्रमों को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे आकाशवाणी के ऐसे केंद्रों की जानकारी दे सकते हैं जो सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद उमंग कार्यक्रम का प्रसारण करते हों? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर बताइएगा।
2: योगेश जी, हम प्रयास करेंगे पता करने की, क्योंकि सभी प्रसारण केंद्रों ने अपनी और छात्रों की सुविधा के अनुसार प्रसारण समय तय कर रखा है। हमारी सलाह होगी कि आप इंस्टाग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो करें। प्रतिदिन के कार्यक्रमों के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, क्लिक कीजिए और किसी भी समय कार्यक्रम सुनिए।
0: जी, अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल दिवांगन जी का।
2: रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और कृष्ण कुमार यादव।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी ज्ञान यात्रा में, यानी ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: जी,
0: तो विमलेश जी शुरुआत की जाए। हमारा कल का विषय था जहाँ बारिश भी रुकना भूल जाती है।
2: जी,
0: तो हमारा आज का विषय क्या होगा?
2: अजीत जी, हमारा आज का विषय होगा जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
0: वाह, जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
2: आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ ऐसे गांवों की जहाँ गर्मी केवल मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है।
0: जी हाँ श्रोताओ, कल्पना कीजिए, आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज सिर के ठीक ऊपर है, हवा चल रही है लेकिन वह ठंडी नहीं है, बहुत गर्म है।
2: जी,
0: धरती इतनी तप रही है कि दोपहर में बाहर निकलना भी किसी परीक्षा से कम नहीं।

0: हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके की, जहां फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
1: जी हाँ श्रोताओ, आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होता होगा। श्रोताओ, यहाँ की सुबह हमारी सुबह से बहुत अलग होती है।
0: जी हाँ श्रोताओ, जब दिल्ली या किसी दूसरे शहर में लोग सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी सवेरे ही शुरू हो जाती है, और लोग जानते हैं कि दिन चढ़ने के साथ गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी।
1: इसे श्रोताओ, बहुत से काम वहाँ सुबह ही जल्दी निपटा लिए जाते हैं, जैसे पशुओं को चारा देना हो, पानी भरना हो, खेत या घर या कोई जरूरी काम हो।
0: जी,
1: यहाँ लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम सूरज के तेज होने से पहले पूरे हो जाएं।
0: बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि वहाँ केवल ये सवाल नहीं होता कि आज कितना काम करना है, सवाल ये भी होता है कि काम किस समय करना है।
1: जी हाँ, तो विमलेश जी, जरा दोपहर की बात भी तो कीजिए।
0: यहाँ दोपहर में गर्मी इतनी बढ़ सकती है कि बाहर का काम कम करना ही समझदारी होती है, इसलिए गाँव में पुराने समय से ही लोग गर्मी से बचने के लिए अपने पार

0: तेज होने से पहले पूरे हो जाएं।
1: बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि वहाँ केवल ये सवाल नहीं होता कि आज कितना काम करना है, सवाल ये भी होता है कि काम किस समय करना है।
0: जी हाँ, तो विमलेश जी जरा दोपहर की बात भी तो कीजिए।
1: यहाँ दोपहर में गर्मी इतनी बढ़ सकती है कि बाहर का काम कम करना ही समझदारी होती है। इसलिए गाँव में पुराने समय से ही लोग गर्मी से बचने के लिए अपने पारंपरिक तरीके विकसित करते आए हैं।
0: जैसे मोटे दीवारों वाले घर
1: जी,
0: छायादार आंगन, हवादार कमरे
1: जी,
0: और खिड़कियों पर पर्दे।
1: वे
0: कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी तरह से दीवारों या पेड़ों की छाया मिल जाए,
1: जी,
0: क्योंकि रेगिस्तान में छाया केवल आराम ही नहीं देती, वो जीवन का सहारा है।
1: श्रोताओ, यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, वो है पानी। सच है, जहाँ बारिश कम हो और गर्मी बहुत अधिक हो, वहाँ पानी की हर बूंद की कीमत समझ में आती है।
0: जी हाँ श्रोताओ, राजस्थान के ग्रामीण जीवन में कुएं, टांके, तालाब और पारंपरिक जल संरक्षण की प्राचीन व्यवस्थाएं सदियों से महत्वपूर्ण रही हैं।
1: जी,
0: यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बचाया हुआ पानी आने वाले दिनों में काम आएगा।
1: यही कारण है श्रोताओं कि यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने पानी को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना, बल्कि उसे संपत्ति और जिम्मेदारी की तरह देखा। तो अजीत जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्यों न हम प्रकृति से यही पाठ सीख लें।
0: जी हाँ विमलेश जी, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। और अब बात करते हैं वहाँ के भोजन की। गर्मी और शुष्क वातावरण के कारण राजस्थान का पारंपरिक भोजन भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है।
1: जी,
0: वैसे विमलेश जी क्या खाते हैं वहाँ के लोग?
1: अजीत जी, वहाँ बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो बाजरे की रोटी, दाल और स्थानीय सब्जियां राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन का हिस्सा हैं।
1: लेकिन अजीत जी, फिर वही बात जो हमने पिछले कार्यक्रम में कही थी, राजस्थान के इन गांवों की जिंदगी केवल गर्मी और पानी की कहानी नहीं है।
0: यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है लोगों की सहनशीलता और अनुकूलन की क्षमता,
1: जी,
0: यानी स्वयं को वहाँ के वातावरण में ढालने की क्षमता।
1: रेगिस्तान ने लोगों को सिखाया है कि जो कुछ हम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करके जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए।
0: जी
1: कई बार प्रकृति को समझना और उसके अनुसार जीवन बनाना ही बुद्धिमानी है।
0: जी हाँ श्रोताओ, जरा सोचिए, हम शहर में गर्मी कुछ डिग्री बढ़ते ही परेशान हो जाते हैं। एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए।
1: लेकिन राजस्थान के गांवों में न जाने कितनी पीढ़ियों ने सीमित साधनों में जीवन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मिट्टी, पत्थर, हवा, छाया और पानी जैसे प्राकृतिक साधनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, और शायद यही हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है।
0: क्या सीख विमलेश जी?
1: यही कि जीवन हमेशा हमारी सुविधा के अनुसार नहीं चलता।
0: जी
1: जीवन में भी तो मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी आएगी तो कभी बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो कभी सूखा पड़ेगा, कभी रास्ते कठिन होंगे। लेकिन इंसान की असली ताकत इस बात में है कि वो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को कैसे ढालता है।
0: तो आप सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है तीन बुद्धिमान।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है।
0: तीन बुद्धिमान।
2: बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में किसी निर्धन व्यक्ति के तीन पुत्र थे, विक्रम, प्रताप और धीरेंद्र। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहने लगा,
3: मेरे पुत्रों।
4: जी पिताजी।
3: देखो, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
4: पिताजी,
3: क्या पता कब लोग सिधार जाऊं।
4: पिताजी, ऐसा ना कहिए, अभी आपका जीवन बहुत लंबा है।
3: नहीं विक्रम बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास ना धन है और ना सोना चांदी। तुम लोगों को कुछ और ही करना होगा।
5: लेकिन पिताजी, हम क्या कर सकते हैं? ना खेत हैं और ना कोई दूसरा काम।
4: जी
3: पुत्र, तुम लोगों को दूसरे तरीके से धन अर्जित करना होगा।
4: लेकिन कैसा तरीका पिताजी?
3: बेटा,

0: वीरेंद्र, देखो धन दौलत जैसी चीजें स्थायी नहीं हैं। आज हैं तो कल नहीं
1: जी।
0: लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे बढ़कर दुनिया का कोई धन नहीं हो सकता, और वो है बुद्धिमत्ता।
1: जी पिताजी।
0: हर वस्तु और स्थिति को ठीक ठीक समझने का प्रयास करो।
1: जी पिताजी, हम प्रयास करेंगे।
2: समय बीता और कुछ समय बाद पिता चल बसे। सभी बेटे एक दिन मिलकर बैठे और विचार किया।
3: हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं।
4: हाँ, तुम ठीक कहते हो भैया, तो क्यों ना हम एक काम करें।
1: भला वो क्या?
3: चलो घूम फिर कर जगत देखें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। पिताजी कहते थे ना कि घूमने फिरने से भी जब हम चीजों को स्थितियों को देखते हैं तो ज्ञान बढ़ता है।
4: हाँ, ये ठीक रहेगा भैया।
2: तीनों भाई चल दिए। लंबी यात्रा थी। खाने पीने का सामान जब समाप्त हो गया तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी की। रास्ते में वे जो कुछ भी देखते बड़े ध्यान से उसका अवलोकन करते और निष्कर्ष निकालते। चलते चलते वे अंत में किसी नगर के पास पहुंचे। नगर के पास एक मैदान था जिसकी मिट्टी रेतीली थी। सबसे बड़ा भाई चलते चलते रुक गया। उसने ध्यान से मिट्टी को देखा और बोला,
3: भाई प्रताप,
1: मुझे
3: लगता है कि यहाँ से कोई ऊंट गुजरा है।
5: जी भैया, और वो भी बड़ा वाला ऊंट। पैर के चिन्हों से तो यही लगता है। क्यों भाई धीरेंद्र?
1: जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं।
3: मुझे लगता है कि ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा था।
2: वे बातचीत कर ही रहे थे कि एक घुड़सवार उनके पास आकर रुका।
3: महाशय, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं?
1: हाँ,
5: आपका ऊंट खो गया है ना?
1: हाँ, मेरा ऊंट खो गया है। हमें सब पता है महाशय, आपका ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता है ना?
6: हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
3: महाशय, हमें तो ये भी पता है कि उस ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा भी था।
6: है?
3: आप सीधा उत्तर दिशा की ओर जाएं, आपको वहाँ ऊंट मिल जाएगा।
6: ऊंट मिल जाएगा? अरे ऊंट तुम लोगों के ही पास है।
1: नहीं नहीं,
6: अरे
1: नहीं,
6: उसे कहाँ छिपा के रखा है?
1: अरे महाशय, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
6: ऊंट का मुंह तक नहीं देखा?
3: नहीं
6: तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें पता कैसे चली?
3: वो
6: देखो, मेरा ऊंट मुझे लौटाओ।
3: लेकिन
6: अरे, अरे तुम लोग ठग मालूम होते हो।
3: क्या?
6: मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ।
2: भाइयों ने बहुत समझाया लेकिन वो घुड़सवार सुनने को तैयार ही नहीं था।
6: मुझे कुछ नहीं सुनना।
1: लेकिन महाशय, हमारी बात सुन ले महाशय।
6: ये निकाली मैंने अपनी तलवार, अब चलो मेरे आगे आगे चलो चलो चलो।
2: इसी बीच उसका भाई भी आ गया। घुड़सवार ने अपने भाई को ऊंट ढूंढने के लिए भेज दिया और तलवार के बल पर उन्हें राजा के पास ले गया।
6: अब तुम सब राजा के पास चलो।
3: महाशय,
6: चलो नहीं तो काट के रख दूंगा। चलो।
7: दुहाई है महाराज, इन लोगों ने मेरा ऊंट चुराया है, मुझे न्याय चाहिए महाराज।
3: राजन, हम चोर नहीं हैं, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
8: तुम्हें कैसे पता कि ऊंट इन लोगों ने ही चुराया है? ये तो कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं।
7: महाराज, यदि ये कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं, तो ऊंट के बारे में मुझे इन्होंने सब कुछ बता कैसे दिया?
8: तुम लोगों को कुछ कहना है?
1: राजन, हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते।

0: हमने परिवेश को समझने में बहुत समय लगाया है, इसलिए बिना देखे ही हमने सब कुछ बता दिया।
1: अच्छा तो ये बात है
0: जी।
1: हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेते हैं। द्वारपाल
2: जी महाराज।
3: राजा ने अपने द्वारपालों को बुलाया और उनके कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। थोड़ी ही देर में द्वारपाल एक पेटी लेकर आए और उसे राजा के सामने रख दी।
1: अब बताओ कि इस पेटी में क्या रखा है।
4: महाराज, इस पेटी में कोई गोल वस्तु है, अनार है।
5: और महाराज, वो अनार कच्चा है।
3: जब पेटी खोली गई तो उस पेटी में सचमुच कच्चा अनार रखा था। बात बिल्कुल सही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और लगा उनकी आवभगत करने।
6: खाइए खाइए, लीजिए।
7: जी महाराज,
8: धन्यवाद।
3: फिर पूछा,
1: तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि पेटी में अनार है।
0: महाराज, जब वे पेटी रख रहे थे तो अंदर से किसी चीज के लुढ़कने की आवाज आई। हम समझ गए कि ये कोई गोल वस्तु है।
5: और महाराज, हमने ध्यान दिया कि द्वारपाल किधर जा रहे हैं। वे आपके राज उद्यान की ओर जा रहे थे, जहाँ अनार के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं।
4: और महाराज, अभी अनार पकने का समय ही नहीं आया तो हमने जान लिया कि अनार कच्चा है।
1: वाह, बहुत खूब।
3: राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा,
1: तो अब ये बताओ कि तुमने ऊंट के बारे में बिना देखे कैसे जान लिया।
5: महाराज, वहाँ पर मिट्टी भुरभुरी थी। हमने ऊंट के पद चिन्हों से जान लिया कि ऊंट बड़ा है।
1: क्या बात है?
0: महाराज, उस मिट्टी पर जूतों के निशान थे। ये जूते महिला के थे और साथ ही साथ छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे।
1: अच्छा,
0: इससे हमने जान लिया कि महिला के साथ कोई बच्चा भी है।
1: जी बहुत खूब। लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि ऊंट एक आंख से ही देख पाता है?
4: राजन, इसका पता लगाना तो बहुत ही आसान था। सड़क की दाहिनी ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, लेकिन बाईं ओर की घास जो कि त्यों थी।
1: उत्तम, अति उत्तम। वाह, तुम लोगों की बुद्धि श्रेष्ठ है।
5: धन्यवाद महाराज।
0: जी महाराज, शुक्रिया महाराज।
1: मैं सचमुच चकित हूँ।
0: जी महाराज।
3: फिर क्या था, राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया।
9: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तीन बुद्धिमान। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट।
10: सफलता की बुलंदियों को सभी छूना चाहते हैं, कामयाबी सभी हासिल करना चाहते हैं,
11: लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है जो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं।
10: आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपनी लगन और कार्यनिष्ठा से लाखों करोड़ों लोगों की और विशेषकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गईं।
11: वे हैं सरला ठकराल, जिन्हें सन 1936 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला पायलट यानी विमान चालक बनने का श्रेय प्राप्त है।
10: भारतीय उड्डयन के इतिहास की बात करें तो अनेक महिलाएं हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है, लेकिन वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मार्ग बना

0: ने की शुरुआत की। जी हां, उनका नाम है सरला ठकराल। उनका जन्म 8 अगस्त सन 1914 को दिल्ली में हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश राज था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह लाहौर निवासी श्री पीडी शर्मा से हुआ। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ लाहौर चली गईं। सरला के परिवार की एक बात बहुत दिलचस्प थी और वो ये कि उनके परिवार में 9 लोग ऐसे थे जिनका संबंध सीधा उड्डयन से था। पति भी अक्सर सरला को प्रोत्साहित करते। सरला को प्रशिक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी ने। एक दिन की बात है,
1: सरला, सरला बेटी, सरला बेटी।
2: अरे बाबूजी, आप
3: कहाँ खोई हो बेटी?
2: आप
3: जरा मैं भी तो जानूं कि क्या सोच रही है मेरी बेटी।
2: जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी खाली समय में कुछ कर लेती।
3: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बेटे। एक बात कहूँ?
2: जी
3: बेटा, मैंने अक्सर देखा है जब भी हम हवाई जहाज की उड़ान की पायलटों की बात करते हैं तो तुम बड़े शौक से सुनती हो।
2: जी बाबूजी, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है।
3: तो फिर देर किस बात की? लाहौर फ्लाइंग क्लब के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
2: अच्छा,
3: मैं उनसे कल ही बात करूंगा।
2: पर
3: मुझे लगता है तुम्हें वहाँ से पायलट बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
2: लेकिन बाबूजी, मैं धन्यवाद बाबूजी।
3: ये बात हुई ना बेटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस।
0: साथियों, दूसरे ही दिन श्री शर्मा सरला को फ्लाइंग क्लब ले गए। इसके लिए एक परीक्षा देनी होती थी। सरला शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने तैयारी की और वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो गईं। मेडिकल जांच व अन्य औपचारिकताओं के बाद उनका दाखिला लाहौर फ्लाइंग क्लब में हो गया। और अब शुरू हुआ उनका प्रशिक्षण। आज प्रशिक्षण का पहला दिन था।
4: साथियों, मैं आप सबका लाहौर फ्लाइंग क्लब में डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं पायलट बनने की ट्रेनिंग में चुने जाने के लिए।
5: धन्यवाद सर।
4: देखिए, कुछ मायनों में हमारा ये सत्र पिछले सभी सत्रों से बहुत अलग है। क्या आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
6: सर, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है।
4: सब कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ तो नया है।
7: सर, मैं बताऊं सर।
4: हाँ हाँ, कहो।
7: सर, मुझे लगता है पहली बार पायलट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक महिला मित्र हैं।
4: बहुत खूब, पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा पहली बार हुआ है?
7: पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में छपा था।
4: बहुत अच्छे, वेरी वेल ऑब्जर्व। देखिए, पायलट बनने की पहली शर्त है आसपास की बातों का गहराई से अवलोकन करना।
2: हाँ, जी सही बात।
4: एक पायलट को हमेशा सजग रहना होता है। अच्छा, अब बताओ कि और कौन कौन सी खूबियां एक पायलट में होनी चाहिए।
2: सर, मैं बताऊं?
4: हाँ हाँ सरला, तुम बताओ।
2: सर, मुझे लगता है कि एक पायलट में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उसमें लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उच्च दबाव या तनाव में भी अच्छी तरह से काम कर पाने की काबिलियत होनी चाहिए।
4: बहुत अच्छे सरला।
2: धन्यवाद सर।
4: तो साथियों, तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत खूबियां यदि आप में हैं, तो बेशक एक दिन आप बेहतरीन पायलट बनेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सब से यही उम्मीद करूंगा। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू सर।
0: प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें कठोर परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। साथियों, पायलट बनने के लिए ए श्रेणी का

0: उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करना होता था और इसके लिए उन्हें 1000 घंटे की उड़ान पूरा करना जरूरी था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने 1000 घंटों की उड़ान बिना व्यवधान के पूरी की।
1: जिस दिन उनके प्रशिक्षण की आखिरी उड़ान थी, उस दिन उनका पूरा परिवार, मित्रगण, पत्रकार और भी कई गणमान्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
0: मीडिया के लिए एक महिला द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना खासा दिलचस्पी का विषय था। उड़ान शुरू हुई।
2: 1000 घंटों की ट्रेनिंग पूरी होना मजाक नहीं होता।
3: I'm so excited.
2: पहली महिला पायलट बनना हम देखेंगे अपनी आंखों से।

0: लैंडिंग
1: कमाल।
2: थैंक यू,
3: बहुत सर लगी है,
2: थैंक यू, धन्यवाद।
3: आप कितने अच्छे तरीके से चले गए, अमेजिंग।
4: जब वो अपने जिप्सी मौत विमान से उतरकर लाउंज में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।
5: दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने साड़ी पहनकर ये उड़ान भरी थी और उन दिनों वे 4 वर्ष की एक बेटी की माँ भी थीं।
4: इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें वायुयान उड़ाने का 1 क्लास लाइसेंस प्रदान किया गया। समाचार पत्रों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जनता को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
5: वायुयान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था विमान उड़ाने का व्यावसायिक या कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करना। लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी।
4: सन 1939 में उनके पति श्री शर्मा का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उन्होंने जोधपुर आने का निर्णय लिया और कमर्शियल लाइसेंस के लिए वे प्रयास करती रहीं। अंततः उन्हें लाइसेंस मिल गया और अब वे लंबी दूरी की व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार थीं। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और सभी नागरिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। लेकिन हिम्मत की धनी सरला ने हार नहीं मानी और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेकर ललित कला और पेंटिंग की क्लास में दाखिला लिया और ललित कलाओं की अन्य विधाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया।
5: उन्होंने वस्त्रों और आभूषणों के एक से एक डिजाइन बनाए और उनका पेटेंट लिया।
4: सुप्रसिद्ध अखबार द ट्रिब्यून को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था,
6: मुझे लगता है कि हमारे पास लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और विकल्प भी हमेशा होने चाहिए। जब मैंने वस्त्रों और आभूषणों का डिजाइन तैयार किया तो उस समय की लगभग सभी प्रसिद्ध महिलाओं को यह डिजाइन बहुत पसंद आए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग खड़ा हो गया जिसने बहुत सी महिलाओं को 20 वर्ष तक सम्मानजनक रोजगार दिया।
4: अपने जीवन में सफलता के कई आयामों को

0: डूबने वाली सरला ठकराल का 15 मार्च 2008 को दिल्ली में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आकाश में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने वाली भारत की इस प्रथम महिला पायलट का जीवन साहस और आत्मविश्वास का एक अनूठा उदाहरण है, जो महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1360वीं कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
5: सिनलाम ने इंजी रॉकर हमांग एंगी रे तका लमकते एलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर 1684 किलोहर्ट्ज रमांग एलंगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्नी निकोबारी प्रोग्राम तहांग।
6: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
5: Min kahatalon hi inge sakam, min kahatalon hi daran mene mahavat kare chog nalag elho nekun panam hi. MV Kalighat, chulitilanaman the ka nikubar italu alap yami September jingit, ida satkendro tapuhi nalagnya headwaf ngachawan, Ipta fan alap yami September jingit, ida fan kanro tala harap narang kar nikubar, sakliti landaman and min el tala garen nahawan nachu Sri Vijayapuram. Kiran garen min hek namchong and vikalikat nachu little landaman the kar nikubar, ipta sat alap yami September jingit, ida sat kanro tabuhi nalignya head of waf, ngachawan, ipta hevara alap yami September jingit, ida fan kanro tala harap narang kar nikubar, Heg Anwin, Nasak Little Andaman, El Talagaran Havan Nachu, Sri Vijayapuram. Nalanda Chunan Kauri the Campbell Bay, Prane, Alap Yami, September Chingit, Ita Majotrakanjra the Buhi Nalegna, Head Wav, Ngachavan, Ita Lu Alap Yami, September Chingit, Ita Heverkanjra the Buhi Narang, Campbell Bay, Seknan Kauri Anmin, El Talagaran Havan Nachu, Sri Vijayapuram. Asungaran Ranmin Gam Chung, MV Nalanda, Nanchu Little Andaman, Ittalu anai alahango jingit. Ita majutrakinro tapuhi nalegnya head waf ngachawan. Iphee, ita majutrakinro tahatam nerang little anaman na Sri Vijayapuram. Anununne min kahtalun hi ingisakama.

0: Tikaknya, Philip Herrel ahanyod, tawe holhi aurekka asaraki adrahan ta asape hanun ta hoi mene ha anghi tinrik ngen hi inka hi tinkeke. Hoi hangna tal ngha angin ngan sen tanga mu hek in huret ay hang rongi ta kasada, ida fan kan ro ta la harap nga yen.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम। श्रोतलंदरिकी राखी शुभाकांक्षलु।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं और अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और 1545 लोग लापता हैं। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाकरा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर

बेचा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक बढ़कर 77,093 पर और निफ्टी 15 अंक बढ़कर 24,106 पर पहुंच गया। भारत के वेलवेन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वाश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चौटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में आज रात वेलवेन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम महफिले कव्वाली। आज इस कार्यक्रम के तहत कव्वाल हैं मास्टर हबीब कव्वाल नियाजी, जानी बाबू कव्वाल और साथी। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहले लीजिए सुनिए मास्टर हबीब कव्वाल नियाजी को।

का सुकूनों सब्र सब कुछ टूट जाता है, यकीनन चाहने वालों से रिश्ता टूट जाता है। गरज अपने

सिवा होता है रुसवाई का गम राहे मोहब्बत में, मगर हिम्मत ना टूटे कम से कम राहे मोहब्बत में, समझ कर सोच कर रखना कदम राहे।

महफिली कव्वाली कार्यक्रम के तहत अभी आप मास्टर हबीब कव्वाल निज़ामी, जानी बाबू कव्वाल और साथियों की आवाज़ों में चंद कव्वालियों का आनंद ले रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ श्री विद्या। श्रोताओं, यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 9474234000 इस नंबर पर और सुनिए अपने मनपसंद गीत। देर न करते हुए सुनवा रहे हैं आज का पहला गीत और ये है फिल्म क्या कहना से। श्रोताओं, इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी और श्री विजयपुरम से पूर्णिमा, आदित्य, सप्तमी, कुंडू और मोनिका, नलेश्वर नगर महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला विशाल मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताड़े और आशीष मोहिकर, ये सारे सुनना चाहते हैं फिल्म क्या कहना का ये गीत।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए फिल्म काजल का एक गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें आई पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा, हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, जगदीश धाकड़, रंजूबाई, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान, ये सारे सुनना चाहते हैं इस फिल्म का ये गीत।

और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में फिल्म अनपढ़ का एक गीत। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोतागण हैं ज़िला नांदेड़ ये ताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्नव, दुर्गेश्वरी, राखी व तृप्ति, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए रेशम की डोरी फिल्म का गीत। आवाज़ है सुमन कल्याणपुर की और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें आई टोरोवाल नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका प्रशांत, प्रियम वामिका और वाणी थांदी का, और असम से हितेंद्र दास का।

श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए छोटी बहन फिल्म का एक गीत। और इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी, दिशा गोस्वामी, शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़।

श्रोताओं, इस गीत के लिए हमें फरमाइश आई है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडानी, अर्चना प्रणय कुमारी, प्रसिद्धि प्रतिभा हीरामन, भीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहेब, राम निवास और धनंजय, और फिल्म का नाम है तिरंगा।

श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर की 2 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, पहले अंग्रेजी में और उसके बाद हिंदी में।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। इससे बचाव कार्य में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटे कोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे।

0: हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
3: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 GW है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है।
4: बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दुकान से संसार बांधा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल शाम तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

फ्रेंड। श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त श्रीविद्या। आज का दिन रिश्तों की मिठास, प्यार और अटूट विश्वास का दिन है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन। रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बंधा एक रेशमी धागा नहीं, बल्कि बहन की स्नेह, विश्वास और भाई के जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है। बचपन की नोकझोंक हो, छोटी छोटी शरारतें हों या मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा, भाई बहन का रिश्ता हर रंग में खास होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये कार्यक्रम हमारे पहले श्रोता के साथ।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो जी। हेलो
0: जी, हमारी बात हो रही है शीतल जी
1: जी।
0: से। आप
1: जी
0: कहाँ की
1: मैडम।
0: रहने वाली हैं, हमारे श्रोताओं को भी बताइए।
1: जी नमस्ते मैडम, मेरा नाम शीतल है और मैं यूपी से बोल रही हूँ।
0: जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए, आज का दिन कैसे मना रही हैं? आपने रक्षाबंधन मनाया?
1: जी मैडम, आज तो रक्षाबंधन है। मैंने अपने भाइयों को राखी बांधा, मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा, और क्या करते हैं, आपकी कुछ याद है, आप कुछ हमसे साझा करना चाहते हैं क्या?
1: जी मैं यही बोलना चाहती हूँ मैडम कि मुझे आपका ये श्री विजयपुरम केंद्र जो है मुझे बहुत पसंद है, हमेशा सुनती हूँ। सच बोलूँ तो मैं दिन की शुरुआत ही रेडियो की होती है, मैं सुबह सुनती हूँ आपका प्रोग्राम, फिर आपके नाम फिल्म प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगती है मैडम।
0: जी अच्छा लगा आपसे बातें हुई। तो सब अभी बता दीजिए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप।
1: जी मैडम, मैं धड़कन फिल्म का दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है ये गाना सुनना चाहती हूँ।
0: ठीक है, आप ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार जुड़ी हैं हमसे, आप क्या इस गीत को किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: जी जी मैडम, मैं अपने एक दोस्त को डेडिकेट करना चाहती हूँ, श्रेया नाम है उसका।
0: चलिए अपनी दोस्त श्रेया के साथ मिलकर सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, चलिए बात करते हैं हमारे अगले दोस्त से। हेलो डियर फ्रेंड।
1: जी,
0: हमारी बात हो रही है यासीन जी से।
1: जी,
0: आप कहाँ रहते हैं यासीन जी?
1: गिरिडीह, झारखंड में रहते हैं।
0: जी, और आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से?
1: छोटी बहन फिल्म का गाना, इसका बोल है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना।
0: जी, गीत जरूर सुनवाएंगे आपको। बताइए, आपने क्या, आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं?
1: जी, हम लोग तो नहीं मनाते हैं मैडम, लेकिन त्योहार को हम
0: जी
1: भाई बहन का एक प्रेम का मने निशानी है।
0: जी, आप नहीं मनाते हैं, लेकिन आपने भैया मेरे राखी के बंधन को वाला सॉन्ग आपने सेलेक्ट किया है, तो आप चाहते हैं कि आपके जो मित्र हैं, जो मनाते हैं, उनके लिए आपने ये गाना डेडिकेट किया है।
1: जी,
0: तो आपके आसपास का क्या माहौल है जो रक्षाबंधन मनाते हैं?
1: अच्छा माहौल रहता है, सभी भाई बहन हिंदू मुसलमान मिलजुल के मनाते हैं, कोई तरह का दिक्कत इधर नहीं है।
0: जी जी जी, तो सुनवा रही हैं यासीन जी आपको ये वाला गीत, आपकी पसंद का गीत। क्या आप ये गीत को किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: जी, मोहम्मद यासीन अंजाम, सैमन नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिश्रा नवाज, देवी चाहत और सादिया।
0: चलिए, सब मिलकर सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड, हेलो। श्रोताओं, लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। हम एक बार फिर इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं।

0: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड
1: हेलो
0: जी, हमारी बात हो रही है सुलोचना जी से। सुलोचना
1: जी,
0: जी, आप कहाँ रहती हैं
1: मैं शादीपुर पे रहती हूँ।
0: जी? कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं
1: मैं हनाड़ी पिक्चर का सही गाना सुना दीजिए अपने
0: जी?
1: सारे
0: तो
1: दोस्तों के साथ।
0: आप सुनना चाहती हैं तो बताइए, आपने रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया कि
1: मैं
0: मनाने
1: बनाई
0: वाली
1: तो
0: हैं
1: कैसे
0: आप
1: बनाई हूँ,
0: जी?
1: नहीं, आधे बच्चे सब बना चुके, इधर उधर जा चुकी है,
0: जी
1: मैंने सुबह बना रही हूँ।
0: जी जी तो आज के दिन आपके घर में क्या खास बनता है?
1: मुझे मीठा कुछ बनाए थे फिर, और

0: नाश्ता बना के उन लोगों की लाए जो आए।
1: जी, तो आप ये गीत किन के साथ सुनना चाहती हैं? अपने दोस्तों के साथ आपने बताया।
0: मैं मेरे दोस्त हाँ मेरे दोस्तों के संग, जैसे कि मुक्ति है, सुनीता है,
1: जी,
0: इनके संग मैं सुनने जाती हूँ।
1: तो सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी
1: फिल्म है अनाड़ी।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो
0: हेलो जी, हमारी बात हो रही है
1: हेलो डियर
0: कोयल जी
1: फ्रेंड।
0: से। जी कोयल जी,
1: जी
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो
1: जी जी जी थैंक यू थैंक यू।
0: बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं? तो
1: मैं आसन पहाड़ में रह रही हूँ।
0: आज कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: तेरी मेहरबानियाँ फिर दिल बेकरार था।
0: जी बहुत ही सुंदर गीत चुना है आपने। और बताइए कुछ अपने बारे में, क्या आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाती हैं?
1: जी बिल्कुल मनाती हूँ।
0: तो आज के दिन ऐसा क्या खास करती हैं अपने भाइयों के लिए?
1: भाइयों के लिए पकवान बनाती हूँ अच्छे अच्छे उनके पसंद का, और फिर टीका और आरती वगैरह करके राखी बांधती हूँ उन्हें को।
0: तो आज
1: लेकिन मैं
0: आपके
1: गिफ्ट
0: भाई
1: नहीं
0: आते
1: देती
0: हैं
1: अपने
0: आपके
1: भाइयों
0: पास कि
1: को।
0: आप जाती हैं उनके घर?
1: मैं जाती हूँ भाइयों के पास।
0: जी। तो आज आपका जाना हो गया?
1: जी आज हो गया, आज का आज मैंने बांध दिया दोनों भाइयों को राखी।
0: जी। आपकी
1: और
0: बातों से लग रहा है कि आप त्योहार आपने
1: मैं
0: मना
1: बहुत
0: लिया है, तो
1: खुश हूँ
0: खुशी
1: इससे।
0: दिख रही है आपकी बातों में।
1: जी।
0: तो कोयल जी सुना रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत, फिल्म है तेरी मेहरबानियाँ।
1: जी
0: जी गीत की बोल
1: बहुत
0: है,
1: बहुत
0: दिल
1: थैंक यू।
0: बेकरार था, दिल बेकरार है।
1: जी

0: डियर फ्रेंड।
1: हेलो
0: जी, हमारी बात हो रही है जंगली घाट के सोनू जी से। जी सोनू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो,
1: बोलिए मैडम।
0: हाँ जी, सबसे पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? जी शायद आप यार आना फिल्म का तेरे जैसा यार कहाँ। श्रोताओं, लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए सुनवा रहे हैं इनकी पसंद पर फिल्म याराना के ये गीत तेरे जैसा यार कहाँ।

0: हेलो डियर फ्रेंड,
1: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड, दीपक जी से हमारी बात हो रही है
2: जी। बोल रहे हैं दीपक जी, बोल रहे हैं
1: जी। कार्यक्रम में स्वागत है आपका दीपक जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
2: मुझे सुनना है चुरा की दिल मेरी ले गई।
1: जी शायद आप मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, चुरा के दिल मेरा। सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गीत। आज का आपका दिन कैसा रहा? अच्छा रहा। तो आप अभी इस वक्त क्या कर रहे थे? आप हमारा कॉल का इंतज़ार कर रहे थे?
2: जी।
1: तो चलिए अभी आपका जो भी इंतज़ार हुआ ख़त्म, सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

तो दोस्तों, इसी प्यार, अपनेपन और खूबसूरत यादों के साथ अब समय हो चला है आज के इस विशेष हेलो डियर फ्रेंड कार्यक्रम से विदा लेने का। आज की बातचीत ने एक बार फिर याद दिलाया कि भाई बहन का रिश्ता कितना अनमोल होता है। दूरियां चाहे कितनी भी हो, समय कितना भी बदल जाए, लेकिन इस रिश्ते में बचपन की यादें और प्यार हमेशा दिल के करीब रहते हैं। इस रक्षाबंधन पर आइए हम सिर्फ एक दूसरे की कलाई पर राखी ही ना बांधे, बल्कि अपने रिश्तों में प्यार और सम्मान और विश्वास का धागा भी हमेशा के लिए मजबूत बनाए रखने का एक वादा भी जरूर करें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। कार्यक्रम के साथ मैं थी आपकी दोस्त श्रीविद्या। अब लेना चाहूंगी आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अपनी दोस्तों के साथ। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए दिन, नई बातों और नई यादों के साथ। नमस्कार।

0: Beard Friend. Vivid Bharati
1: FM 3 Vijaypuram 100.9 आपका हम सफर.

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम। यूं ही गाते रहो।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। और आज का ये सफर है भाई बहन के उस खास रिश्ते के नाम जिसमें प्यार भी है, तकरार भी है और ढेर सारी खूबसूरत यादें भी हैं। राखी के इस मौके पर चलिए सुनते हैं ऐसे ही कुछ प्यारे गीत जो इस रिश्ते की मिठास को और भी बढ़ा देते हैं।

बचपन की यादों में भाई बहन की शरारतें हमेशा खास होती हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ना और फिर कुछ ही देर में दोबारा साथ खेलना, यही तो है इस रिश्ते की खूबसूरती।

और दोस्तों, राखी सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि बचपन से जुड़ी उन अनगिनत यादों का एहसास भी है जिन्हें समय कभी पूरा नहीं कर पाता।

भले ही जिंदगी हमें अलग अलग रास्तों पर ले जाएं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता दिल के सबसे करीब बना रहता है। और इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ बढ़ते हैं आज के अंतिम गीत की ओर।

श्रोताओं, तो इसी प्यारे से एहसास के साथ आज के यूं ही गाते रहो राखी स्पेशल से मुझे दीजिए इजाजत। अब आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। भाई बहन का ये खूबसूरत रिश्ता हमेशा प्यार, खुशियां और मुस्कुराहटों से भरा रहे। फिर मिलेंगे गीतों के एक और खूबसूरत सफर में, तब तक यूं ही गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

श्रोताओं, हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से। दोस्तों, हमारी इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है अनुपमा श्रीवास्तव की लिखी कहानी 11वां सेकंड। क्या आप बता सकते हैं कि 7वां आसमान क्या होता है? नहीं ना, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, यानी मैं भी नहीं बता सकती। लेकिन कई बार होता है ना, जब आप चीजों को जाने बगैर भी उन्हें बहुत गहराई से महसूस कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि पिछले 30 मिनट से मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। लग रहा है जैसे मैं यमुना के किनारे पर नहीं, उसी 7वें आसमान पर बैठी हूं। मतलब हद होती है भाई। पता है, एक तो मैं यहां पूरे आधे घंटे से सड़ रही हूं, ऊपर से मेरा फोन भी डिस्चार्ज हो गया है, यानी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए समय काटने का भी सहारा नहीं है। उस पर सितम ये कि इन बंदरों के डर से पिछले 30 मिनट में 36 जगह बदल चुकी हूं। मुझे मालूम था यहां का हाल, इसीलिए मैंने कहा भी था कि यमुना की क्या पड़ी है, कॉफी हाउस में मिलते हैं ना। पर नहीं, जनाब तो जिद करने लगे, नहीं नहीं प्लीज, बहुत अच्छा लगता है बहती नदी के किनारे बैठना, बहते पानी की आवाज सुनना। सोचो, कहां कॉफी हाउस की किचकिच और कहां नदी की कलकल। तुम ही बताओ कहां सुकून मिलेगा।

वाह, क्या सुकून मिल रहा है। आओ आकर देखो जरा इस रोमांटिक और पीसफुल माहौल को। उफ, एक तो हवा के संग ये बाल मुंह पर आ रहे हैं, ऊपर से इतनी चींटियां हैं यहां, पैर में काट लिया है वो अलग। और ये जो सामने पानी बह रहा है ना, इसे देख देख कर लग रहा है जैसे पानी नहीं, मेरा सब्र सुकून ही बहकर सीधे बंगाल की खाड़ी में समाता जा रहा है।

सीधे बोल दूंगी कि इतने ही मरे जा रहे हो तो नदी का वॉलपेपर लगा लो, पर मेरा दिमाग चाटने की सोचना भी मत। अब बहुत हुआ, बहुत सुन ली पानी की ये कल कल। अब अगर अगले 2 मिनट में इसके दर्शन नहीं हुए तो मैं सीधे ऑटो पकड़ लूंगी, और अगर कसम से आगे ये महाशय अभी आ जाए तो बोल दूंगी, लो भाई ये रहा तुम्हारा रोमानी किनारा, अब बैठो यहां और देखते रहो। चलो कोई नहीं, मैं मान गई, पर गलती मेरी ही है ना, मैं आखिर मान क्यों गई। अरे कॉफी हाउस में बैठी होती तो कम से कम एक कॉफी ही पी लेती, यहां तो मुंह सिए बैठी हूं। ठेले वाले से मूंगफली ली थी, वो भी वो शैतान बंदर छीन ले गया। भाई साहब उस वक्त मेरी ऐसी चीख निकली कि आसपास के 2-4 कौवे भी डर कर उड़ गए। अभी तक सांसें नॉर्मल नहीं हो पाई हैं, डर के मारे मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे बुलेट ट्रेन चल रही हो, पर इन महोदय का कहीं कोई अता पता नहीं है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे लग रहा है कि मेरी सब्र का फल तो कब का पक कर सड़ चुका है। और तो और अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई चीज अंतहीन है तो वो है इन महाशय का 2 मिनट।

इस सुकून के चक्कर में बंदर मूंगफली ले गया, बाल मुंह में घुसे जा रहे हैं, चींटियां काट रही हैं और खून खौल रहा है। अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहूं तो मेरी खींच इस वक्त खतरनाक एसिड बन चुकी है और जैसे ही वो आएगा ना तो न्यूट्रलाइज यानी खत्म होने के बजाय सीधे ब्लास्ट होगा। कोई है जो उसे समझाए कि सुकून नदी के किनारे नहीं टाइम पर आने से मिलता है। एक तो ये जो कंधे पर बैग के नाम पर किताबों का पिटारा लादकर चलता है ना, उसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, कॉलेज में तो समझ में आता है, पर यहाँ यमुना किनारे अपनी दोस्त से मिलने आते समय तो उस बेताल को छोड़कर आया जा सकता है ना। और मत छोड़ो, कम से कम जल्दी से उठाकर चल तो दो। कोई एक किताब कम रह जाएगी तो कंधा उठाने से मना नहीं कर देगा, पर नहीं, मुझे मालूम है यही आदत है उसकी। तभी तो मैं सुकृत की बजाय सुकरात कहती हूँ उसको। रवैया ही ऐसा है उसका, ज्ञान तो ऐसे बांटेगा जैसे सीधे यूनान से चला रहा हो, पर टाइम पर आने की अक्ल एक पैसे की नहीं है। सच बोल रही हूँ, फोन में अगर एक कॉल लायक भी चार्जिंग होती ना तो अभी सुनाती। अरे तुम बस ये बताओ कि मैं ही फालतू हूँ क्या? कहा था कि भाई आज नहीं संडे को मिल लेते हैं, आज मुझे जरूरी काम है, अपना लैपटॉप ठीक करवाना है। पर नहीं, लैपटॉप का क्या है, संडे को करा लेना ना प्लीज। उफ, जब ये सुकरात प्लीज कहता है ना तो न जाने क्या मंत्र फिरता है कि मैं मना नहीं कर पाती। पर लो, लूटो नरम दिल होने का मजा, करो इंतजार। सच पूछो तो इस हाँ कहने की आदत ने ही तो मेरी जिंदगी का रायता बना दिया है। मेरी ही मती मारी जाती है जो पिघल जाती हूँ, पर अब और नहीं। मैं यहाँ जमीन की रजिस्ट्री कराने आई हूँ क्या, जो हिलूंगी नहीं? और ये सूरज देवता तो जैसे सीधे मेरे माथे पर ही अपना तवा रख कर बैठ गए हैं। अब कसम खाकर कह रही हूँ, अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आया ना तो वापस चली जाऊंगी।

हाँ भाई, मैं ही दुनिया की सबसे वेली इंसान हूँ जिसके पास बस यही एक काम बचा है कि नदी किनारे इंतजार में कुढ़ते हुए सुकून नाम के तत्व की तलाश करूँ।

ये देखो, यहाँ मारे इंतजार में कुढ़ कुढ़ कर पूरे फेस की शाइनिंग चौपट हो गई, और ये महाशय बड़े टूरिस्ट बने मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं, बड़े स्टाइल में आंखों पर काला चश्मा और कंधे पर बैग की जगह कैमरा टांगे। सुन रहे हैं आप लोग दूर से ही उनका वो मंद्र सुर वाला प्लीज हवा में तैरता हुआ चला आ रहा है। पर इस बार मैं अपनी अक्ल पर ताला और कानों में उंगली डालने वाली हूँ। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर भाई साहब खुद को हॉलीवुड का कोई स्टार समझ रहे हैं, और यहाँ नदी किनारे मेरी हालत तो देखो, इन बिखरे बालों में किसी हॉरर फिल्म की हीरोइन लग रही हूँ। मेरा मन कर रहा है कि उसके इस हॉलीवुड वाले स्वैग को इसी नदी के पानी में डुबो दूं। कैमरे का लेंस मुझ पर टिकाए अपनी सुकराती आवाज में सुर तो ऐसे लगा रहा है जैसे संगीत में पीएचडी कर रखी हो। देखो बताई दे रही हूँ, मेरा फोटो मत लो। मैंने अपने गुस्से का पूरा आसमान इस एक वाक्य में उड़ेल देना चाहा, पर लगा कि ठीक से उड़ेल नहीं पाई। ये सुकरात ऐसी बुद्ध मुस्कान फेंक रहा था कि मेरा सातवां आसमान ठीक उसी तरह से सिर के ऊपर से खिसक गया जैसे मुहावरों में पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। उसका गाना सुर पकड़ चुका था।

इस बीच मेरे मना करने के बावजूद वो मेरी कई तस्वीरें ले चुका था। ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? कोई मूड होता है फोटो वोटो का? अरे बाद में खिंचाऊंगी किसी दिन। उसने कैमरे का स्क्रीन मेरी तरफ किया। ये देखो कैसा मुंह बना रखा है तुमने। मैंने उसे घूरा। सब तुम्हारी ही कृपा है। आधा घंटे इन बंदरों के बीच वेट करवाओगे तो मुंह नहीं बनेगा तो क्या होगा? बस यही गलत सूत्र तो हमने रट लिया है। इस बार उसने चश्मा हटाकर अपनी बुद्ध मुस्कान फेंकी। ये जरूरी नहीं कि मुंह ही बने, पर क्या करें, हमने इंतजार के पलों को ऐसे ही कुढ़-कुढ़ कर जीना सीखा है। मैं उसी के अंदाज में बोली, यथार्थ महानुभाव, किंतु आप हम सांसारिक जीवों से और क्या अपेक्षा करते हैं? जीने की। ये दो शब्द उसने ऐसे कहे जैसे किसी गीत की लाइन दोहराई हो। तो क्या मैं यहां मर रही थी? दिल पर हाथ रखकर बोलो, जिंदा थी? मैं हंस पड़ी। नहीं, बाय गॉड नहीं थी। अच्छा सुनो, कॉफी हाउस चले थोड़ी देर के लिए? उसने कहा, हाँ श्योर। मैं स्कूटी मोड़ने लगी तो उसने कहा, सुनो सिया। हाँ। पीछे देखो जरा। पीछे क्यों? क्योंकि आगे जाते हुए कभी कभी मुड़कर देख लेना चाहिए पीछे। जब उसने ये वाक्य कहा तब मेरी नजर उसके चेहरे पर नहीं थी, पर मुझे पता था कि उसकी बुद्ध मुस्कान अब पूरे चेहरे पर एक शांत भाव बनकर फैल गई होगी। मैंने हेलमेट हटाकर पीछे देखा और देखती रह गई।

सूर्यास्त से पहले के सिंदूरी रंग में लिपटा वो पूरा आलम पीछे छूटने लगा। एक दूसरे के पास पास खड़े सटकर बतियाते से लगते उन पुराने मंदिरों के रंगीन झुंड, घाट पर आंख बंद किए बैठे वो लोग, उंगलियों में फिरती हुई वो सुमरनिया, वो हंस गति से थिरकती हुई नावें, वो सांवला पानी, सब कुछ। जैसे ही स्कूटी मुड़ी, यमुना का नजारा नजरों से ओझल होने लगा, मानो उसी नम रोएदार सिंदूरी रंग ने उसे अपने भीतर समेट लिया हो। हम दोनों चुप थे और हमारी उस गुनगुनी खामोशी में केवल स्कूटी के पहियों का संगीत बज रहा था। उसने पूछा, पर हम कॉफी हाउस क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की कॉफी बहुत बढ़िया होती है और वहाँ एक अदद डिस्चार्ज फोन को चार्ज भी किया जा

साल भर से जानती हूँ इसे, कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त हैं हम, पर कभी कभी लगता है कि मैं इस बंदे को कभी नहीं जान पाऊंगी। खैर, चार्जर हासिल करने के लिए मैंने एक और कोशिश की, इस बार रिक्वेस्ट वाले मोड में। दे दो भाई प्लीज। क्यों, मैंने झुंझलाकर कहा, क्या बचपना है ये, अब ये भी कोई सवाल हुआ क्यों? अरे कोई जरूरी मैसेज हुआ तो? क्या जरूरी मैसेज हुआ तो? अरे अगर कुछ घंटे गैजेट से दूर रहोगी तो पिछड़ी हुई नहीं कहलाओगी। इंटरनेट नाम का ये समंदर क्या हाथ लग गया, हम सही गलत, झूठ सच, असली नकली, सब कुछ डाइजेस्ट करने लग गए हैं। जानती हो मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? मैंने पलटकर पूछा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम लोग गैजेट्स को गैजेट्स की तरह नहीं, इंसानों की तरह ट्रीट करने लगे हैं। असहज हो जाते हैं हम उनके बिना, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, पर जब कोई पास में हो तो उसके होने को, उसके साथ के उन गुनगुने पलों को हम महसूस ही नहीं कर पाते। और जिंदगी के जादू से भरे कितने ही पलों को यूं ही बीत जाने देते हैं, यूं ही माने अनदेखा। मैंने थोड़ी पर हाथ रखकर उसे घूरा, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मुझे गैजेट्स का एडिक्शन है, मुझे लत है इनकी, मैं इनके बिना जी ही नहीं सकती, है ना? नहीं, वो मुस्कुराया, फिर वही बुद्ध मुस्कान, मुझे बस ये लगता है कि ये कुछ पल तुम इन गैजेट्स के साथ नहीं, मेरे साथ जियो। मैंने चिढ़कर लापरवाही से कहा, क्यों, कुछ पलों बाद तुम मरने वाले हो क्या? नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता कि मरने से बड़ा सवाल ये है कि हम जी रहे हैं या नहीं? जानती हो सिया, मैं कई बार सच में ये सोचता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं। मैंने हाथ जोड़े, तुम्हारा तो पता नहीं, पर इस वक्त तुम ना तो मुझे आगे बढ़ने दे रहे हो और ना ही पीछे। वो हंस दिया, धीमी सहज हंसी। अच्छा अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमने इस प्याला भर कॉफी को जिया या नहीं? बिल्कुल जिया, घूंट घूंट जिया, मैंने कहा, और कॉफी हाउस में बज रहे गीत को संग संग गुनगुनाने लगी।

मैं हैरान थी। पता नहीं क्या हो गया था इस सुकरात को आज, कैसी पहेलियां सी बुझा रहा था। एक तो वहाँ बंदरों के बीच बैठकर गुस्से में उबलने से पहले ही मेरा दिमाग सेंटर से थोड़ा सरक गया था। उस पर ये दार्शनिक उसे पूरी तरह अपनी जगह से बेदखल करने पर उतारू था। मैं बोली, देखो वैसे भी तुम अक्सर सिर के ऊपर से निकल जाते हो, पर आज तो विशेष तौर पर पल्ले नहीं पड़ रहे हो। वो हंस पड़ा, तो जरूरत क्या है, मत समझो तुम ना, बस कुछ पल के लिए अपनी ये सारी समझदारियां किसी पोटली में बांधकर कहीं दूर पटक दो और अभी बस जियो। और सुनो, एक एक पल को जीना। फिर बोला, अच्छा जरा उधर तो देखो। अरे पीछे नहीं, आगे देखो। हम जहाँ बैठे थे वहाँ सामने एक बड़ा सा आईना था। उस आईने में हम थे, माने हमारे प्रतिबिंब। उसने कहा, देख रही हो, ये वर्तमान है, वो पल जिसमें हम तुम हैं। ये पल हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा सिया, लेकिन जानती हो, डूब कर जिया हुआ हर लम्हा कहीं नहीं जाता, वो हमारे अंदर ही कहीं छूट जाता है, कहीं बस जाता है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 5 बजे हैं। हमारी नृत्य सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் வழங்கும் தமிழ் அமுதம் வணக்கம் நேயர்களே.

0: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
1: এর সঙ্গে শেষ করব আমাদের আজকের বাংলা অনুষ্ঠান। প্রচারিত হলো আকাশবাণী শ্রী বিজয়পুরম কেন্দ্র থেকে। আপনারা সকলে খুব ভালো থাকবেন। শুভ রাত্রি।
2: अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आप सुनेंगे भेंट वार्ता। चर्चा का विषय रहेगा स्नेह, सम्मान और सुरक्षा का पर्व रक्षाबंधन।

कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान साथियों को जोया की ओर से प्यार भरा नमस्कार। किसान साथियों, दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की जिंदगी का रास्ता अलग होता है। किसी की सफलता जल्दी दिखाई देती है और किसी की देर से। अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और अपने समय का इंतजार कीजिए। जब रास्ता कठिन हो जाए तो रुकना नहीं चाहिए। याद रखिए, पहाड़ पर चढ़ने वाला हर कदम उसे मंजिल के करीब ले जाता है। उसी तरह जीवन में भी की गई हर छोटी मेहनत हमें हमारी सफलता के करीब पहुंचाती है। बस खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के इन्हीं विचारों के साथ आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, आज का प्रश्न है, पशुओं में कंधों का घाव किस कारण से होता है? प्रश्न मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ, पशुओं में कंधों का घाव किस कारण से होता है? आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहिए, कार्यक्रम के दौरान हम इसका उत्तर आपको अवश्य बताएंगे। साथियों, आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार और विश्वास का सुंदर त्योहार है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी खुशियों की कामना करती है। भाई अपनी बहन की हमेशा रक्षा करने और उसका साथ देने का वचन देता है। राखी का धागा केवल एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और रिश्ते की निशानी है। यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। रक्षाबंधन हमें सिखाता है, सच्चे रिश्ते प्यार, सम्मान और साथ से मजबूत होते हैं। आइए इसी विषय पर सुनते हैं मिलनदीप कौर जी से की गई ये वार्ता, जिसका विषय है स्नेह, सम्मान व सुरक्षा का पर्व रक्षाबंधन।

रक्षाबंधन हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है और इसका इतिहास हमें पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। इसकी कई कहानियां हैं, जैसे सबसे मशहूर कहानी है भगवान इंद्र और इंद्राणी की। जब देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था और देवताओं की हार लगभग निश्चित ही थी, तभी इंद्राणी ने वैदिक मंत्रों के साथ एक पवित्र रक्षा सूत्र बनाया, जिसे भगवान इंद्र की कलाई पर बांध दिया और ना जाने उससे क्या चमत्कार हुआ कि देवताओं ने युद्ध में विजय प्राप्त की। तभी से वैदिक ग्रंथों और पुराणों में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चल पड़ी। एक और प्रसिद्ध कहानी भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण की उंगली से खून निकलने लगा, तभी द्रौपदी ने बिना सोचे समझे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने इस प्रेम और स्नेह का ऋण जीवन भर निभाया और चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की। इतिहास में भी रक्षाबंधन का ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को अपने हाथों से एक राखी बनाकर भेजी और हुमायूं ने इस रिश्ते का सम्मान करते हुए उनकी और उनके राज्य की रक्षा की। रक्षाबंधन सिर्फ भाई के द्वारा बहन की रक्षा का वादा नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान, भरोसा और जिम्मेदारी का वादा होता है। आज के समय जब जिंदगी की भागदौड़ की वजह से रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं, तब रक्षाबंधन हमें याद दिलाता है कि अपने रिश्तों का समय देना, उनका सम्मान करना और उन्हें निभाना कितना जरूरी है। आजकल रक्षाबंधन को पर्यावरण से भी जोड़ा जाता है। लोग पेड़ों को राखी बांधते हैं और उनकी सुरक्षा का संकल्प लेते हैं। बीज से बनी इको फ्रेंडली राखियां भी आजकल बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें रक्षाबंधन के उपरांत उतार कर बोया भी जा सकता है, जिससे पर्यावरण की भी रक्षा होती है। इस प्रकार की रक्षा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आज परिवार दुनिया के अलग अलग शहरों और देशों में बसे हुए हैं। ऐसे में बहन डाक कॉरियर ऑनलाइन माध्यमों से भी अपने भाइयों को राखियां भेजती हैं। वीडियो कॉल के जरिए भी रक्षाबंधन पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। टेक्नोलॉजी ने जरूर दूरियों को कम कर दिया है, लेकिन त्योहार की असली भाव आज भी वही है, प्रेम, विश्वास और अपनापन। रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास, सम्मान और अपनापन होता है। सिर्फ सुरक्षा का वादा नहीं, बल्कि उस पे खरा उतरना भी बहुत जरूरी होता है। मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करना और परिवार के संस्कारों का पालन करना, यही रक्षाबंधन का असली महत्व है। भारतीय संस्कृति का एक अनमोल रत्न है रक्षाबंधन। सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, विश्वास और सुरक्षा का एक ऐसा सामाजिक भाव जो पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमें त्योहार की भावना को केवल त्योहार तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसके भावों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपनाना चाहिए। रक्षाबंधन मनाने की सामान्य विधि इस प्रकार है। पूजा की थाली को तैयार करें। पूजा की थाली में राखी, लोरी यानी कुमकुम, चावल, दीपक, मिठाई और नारियल को रखें। पूजा करें। शुभ मुहूर्त के समय ही भगवान को याद कर उनकी पारंपरिक तौर पर पूजा कर अपने परिवार के सभी लोगों की तरफ थाली को अर्पण करें। भाई का तिलक। भाई का तिलक करना रक्षाबंधन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। माथे पर कुमकुम, चावल और चंदन का तिलक किया जाता है। राखी बांधना। बहन भाई की कलाई पर अपने हाथों से सजाई हुई खूबसूरत राखी को 3 बार मोड़कर बांधती है। आरती उतारें। राखी बांधने के तुरंत बाद भाई की आरती उतारी जाती है ताकि उसे बुरी नजरों से बचाया जाए। मिठाई खिलाना। भारतीय संस्कृति में मीठे व्यंजनों का काफी उच्च स्थान है। इससे माना जाता है कि भाई बहन के रिश्तों में मिठास हमेशा बनी रहे। उपरांत भाई बहन को बहुत खूबसूरत सा उपहार देता है जो उनके रिश्ते को मजबूत बनाता है और बहन के लिए एक खूबसूरत सा एहसास देता है। आज के समय में जब भाई बहन बहुत दूर दूर देशों और विदेशों में अलग अलग रहने लग गए हैं, तब भी टेक्नोलॉजी के मदद से वो एक दूसरे को तोहफे भेजते हैं, राखी भेजते हैं और साथ ही साथ वीडियो कॉल पर बात कर एक दूसरे के साथ होने का एहसास लेते हैं। और हमें इससे पता चलता है कि ये सब परंपराएं सिर्फ परंपराएं नहीं, बल्कि भाई बहन को एक दूसरे के साथ करीब लाने का एक बहुत खूबसूरत सा मौका देते हैं, जिससे भाई बहन के बीच हुई छोटी मोटी नोक झोंक भी गायब हो जाती है।

और इससे रिश्ते मजबूत बनते हैं। और जहां बात आती है नोकझोंक की, तो राखी से अच्छी और क्या बात हो सकती है। कहा जाता है कि पुराने समय में जब युद्ध का वक्त होता था, तब बहनें अपने भाइयों से तोहफा नहीं लेती थी राखी पर, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही विश्वास था कि भैया बस तुम आ जाओ, तुमसे बड़ा उपहार मुझे और कुछ नहीं मिल सकता। कहा जाता है कि अलग अलग मंदिरों में भी लड़कियां जिनके कोई भ्राता नहीं होते या भाई नहीं होते, वो भगवान की मूर्तियों को भी राखी बांधती हैं और ये संकल्प मांगती हैं भगवान से कि वो हमेशा उनके और उनके परिवार की रक्षा करें और उन्हें समृद्धि प्रदान करें। और इसी तरह हमारे जवानों को भी कई बहनें राखियां बांधने बॉर्डर तक जाती हैं। रक्षाबंधन केवल भाई बहन तक सीमित नहीं होता, रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा तो काफी वक्त से चली आ रही है। कई बार ननद अपनी भाभियों को भी राखी बांधती है और ये परंपरा ज्यादातर राजस्थान और गुजरात में प्रचलित है, क्योंकि उनका मानना ये है कि रिश्ते केवल भाई बहनों में नहीं बनते, वो बनते हैं कि उनके आसपास आपके कितने और लोग हैं उनसे भी रिश्ते बनाए जाते हैं। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई

0: परंपरा तो काफी वक्त से चली आ रही है। कई बार ननद अपनी भाभियों को भी राखी बांधती है और ये परंपरा ज्यादातर राजस्थान और गुजरात में प्रचलित है, क्योंकि उनका मानना ये है कि रिश्ते केवल भाई बहनों में नहीं बनते, वो बनते हैं कि उनके आसपास आपके कितने और लोग हैं उनसे भी रिश्ते बनाए जाते हैं। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर नहीं बल्कि अपने मनों में भी बांधें, दिलों को दिलों से जोड़ें, रिश्तों को मजबूत बनाएं और प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का ये अटूट बंधन जीवन भर आपका साथ निभाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात का समर्पण करती हूँ। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
1: साथियों, अभी आपने मिलनदीप कौर जी से की गई ये वार्ता सुनी।
2: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
3: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
4: और अब चलिए साथियों, कार्यक्रम के रुख को बदल कर ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अभी आपने ये गीत सुना और हमें लगता है कि इस गीत को आपने जरूर सराहा होगा।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: अब जैसा कि कार्यक्रम में कुछ और समय बचा है, आइए हम आपको दे देते हैं ये छोटी सी जानकारी जिसका विषय है टमाटर में बैक्टीरियल विल्ट।
4: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें टमाटर में लगने वाले एक रोग बैक्टीरियल विल्ट या जीवाणु बुरझान के संदर्भ में। जी हाँ, ये एक ऐसी बीमारी है जो टमाटर के उत्पादन को काफी प्रभावित करती है। टमाटर की खेती हर एक किसान भाई करते हैं और इसकी बाजार में अच्छी मांग भी रहती है। टमाटर भोजन को न केवल स्वादिष्ट बनाता है बल्कि इसमें बहुत से विटामिन भी रहते हैं, जैसे विटामिन बी, सी तथा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। हमारे किसान भाइयों को टमाटर की अधिक पैदावार लेने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्रमुख है कीट एवं बीमारियां। जहां तक बीमारियों का प्रश्न है, जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया कि एक रोग जिसे हम बैक्टीरियल विल्ट कहते हैं काफी भयंकर रूप से खेतों में लगता है। ये बीमारी हमारे इन द्वीपों के हर भाग में, जहां जहां टमाटर की खेती होती है वहां पाई जाती है। इसके कुछ एक लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपके खेत में बैक्टीरियल विल्ट की बीमारी लगी है। प्रमुख लक्षण है जब पौधा नर्सरी में हो या जब पौधे खेत में लगते हैं तो पौध लगाने के 10 से 12 दिनों में ही पौधा मुरझा जाता है और सूख जाता है, या कभी कभी जब पौधे फल लगने लायक हो जाते हैं या जब पौधों में फल लगता है उस समय ये बीमारी आती है तो पौधा सूखकर मर जाता है। अगर सुबह सुबह हम इन पौधों को देखें तो ये बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देंगे, परंतु जैसे जैसे ही दिन चढ़ने लगता है या धूप तेज होती है तो ये पौधे मुरझाने लग जाते हैं। ये प्रक्रिया लगभग 2-3 दिन तक चलती है और अंत में पौधा मर जाता है। ऐसे में अक्सर किसान भाइयों को लगता है कि शायद पौधा बिना पानी के मर गया, यानी पानी की कमी से पौधे की मृत्यु हो गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि ऐसे पौधों को यदि आप पानी दें व सिंचाई करें तब भी ऐसे पौधे ठीक नहीं हो पाते। इस तरह से जो पौधे मर जाते हैं उन पौधों को उखाड़कर इनकी जड़ों को एक गिलास जिसमें साफ पानी है उसमें रख दें तो 4 से 5

0: मिनट बाद आप पाएंगे कि गिलास में जो पानी है वो बिल्कुल हल्का दूधिया रंग का हो जाता है। इससे पता चल जाएगा कि आपके पौधों में बैक्टीरियल विल्ट की बीमारी लगी थी। क्योंकि ये रोग भूमि में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसलिए पूरी तरह से भूमि को उपचारित करना तो संभव नहीं होता है। हाँ, नर्सरी के लिए हम भूमि को जरूर उपचारित कर सकते हैं। जीवाणु मुरझान यानी बैक्टीरियल विल्ट की बीमारी टमाटर, बैंगन, अदरक, मिर्च, मूंगफली, गेंदा, कॉस्मोस आदि बहुत सारे पौधों में लगती है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को इससे काफी सतर्क रहना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए फसल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए फसल चक्र को अपनाना चाहिए। 2-3 साल का फसल चक्र अपनाएं तो इससे कुछ फायदा होगा। अगर आपके खेत में टमाटर में ऐसी बीमारी लग जाती है तो अगली बार उसी खेत में टमाटर को ना लें। पौध लगने से पहले उर्वरकों के साथ ब्लीचिंग पाउडर 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिला दें। कभी रोगी खेत से निरोगी खेत में सिंचाई का पानी न जाने दें। 1-2 पौधों को रोगी देखने पर उन्हें तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। गर्मियों में खेत की जुताई भी इस बीमारी से निजात पाने के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इन सब के अलावा सबसे कारगर व सरल तरीका है रोग रोधी किस्मों को अपनाना। अगर आप टमाटर की ऐसी किस्मों की खेती करेंगे जिसमें बैक्टीरियल विल्ट की प्रतिरोधक क्षमता है, ऐसे में आप इस रोग से कुछ हद तक बच सकते हैं और टमाटर की सफल खेती कर सकते हैं।
1: टमाटर में बैक्टीरियल विल्ट। साथियों, अभी इस विषय पर आपने छोटी सी जानकारी हासिल की। क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। और अब वक्त हो चला है आज आपसे पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर देने का। हमने आपसे पूछा था, पशुओं में कंधों का घाव किस कारक से होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जीवाणु। जी हाँ साथियों, पशुओं में कंधों का घाव जीवाणु के कारण होता है। अब आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा।
2: इंडिया ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, अ नेशनल इनिशिएटिव इनवाइटिंग क्रिएटर्स टू शोकेस द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट्स, वेदर इट्स कल्चर, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations. Your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2,00,000 rupees at the UT level and 5,00,000 rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: इसी के साथ आज की हमारी

0: श्रोताओं, अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत एक भेंट वार्ता सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थी श्रीमती मिलनदीप कौर और कंपेयरर थी जाहिरा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है समाचार तरंगिणी। इस अंक में UPI खेलो इंडिया संवाद, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस तथा नशा मुक्त विषयों पर आधारित विशेष समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे। वाचिका है अनामिका सेन गुप्ता, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता पी हरिकृष्ण IIS।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है समाचार तरंगणी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर कहा है कि हर भारतीय को देश की इस डिजिटल क्रांति पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई की शुरुआत भारत के डिजिटल भुगतान के सफर में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की शुरुआत 2016 में आज ही के दिन हुई थी। इन 10 वर्षों में यूपीआई देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है और अब 11 देशों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2016-17 में यूपीआई के जरिए करीब 1,78,00,000 लेन देन हुए थे, जो 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गया है। इसी दौरान लेन देन की राशि 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 314,00,000 करोड़ रुपए हो गई।
1: भारत के जिस रिफॉर्म ने दुनिया में हलचल मचा दी है वो है यूपीआई, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पॉलिसी, प्रोसेस और डिलीवरी के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए उपलब्ध सूचनाओं का कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए बेहतर विश्लेषण किया जाए। श्री शाह ने आतंकवाद और कट्टरपंथ से प्रभावी ढंग से निपटने, भगोड़ों को वापस लाने और लंबित मामलों में तेजी लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के मामलों की जांच में व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने को कहा। सम्मेलन के पहले दिन आतंकवाद, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान, मादक पदार्थों पर नियंत्रण, अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन तथा साइबर अपराध से निपटने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। माय भारत श्री विजयपुरम की ओर से कल खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के खिलाड़ियों और युवाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। सांसद विष्णु पद्रे, दक्षिण अंडमान की उपायुक्त पूर्वा गर्ग, सूचना प्रसार एवं पर्यटन के सचिव विनायक चामड़िया सहित माय भारत के अधिकारी, युवा प्रतिनिधि, स्वयं सेवक और खेल प्रेमी मौजूद रहे। कार्यक्रम में खेल जगत से जुड़ी हस्तियों, संध्या किस्पोट

0: कर्मा टोपो और केपी ममू के साथ साथ भारतीय खेल प्राधिकरण श्री बीजापुरम के खिलाड़ियों और एथलीटों ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री के वर्चुअल संवाद के बाद यूथ आइकॉन हरीश कुमार ने खिलाड़ियों के साथ परिचर्चा का संचालन किया। इस अवसर पर आकाशवाणी से बात करते हुए कयाकिंग और कैनोइंग के खिलाड़ी संध्या किसपोटा ने कहा,
1: सरकार ने 10 साल में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जैसे पहले हमारे पास इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, इतनी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि खिलाड़ियों के लिए सरकार ने बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम लाए हैं जिससे खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रही है, जिससे खिलाड़ी अपने आप को बेहतर प्रदर्शन के लिए अच्छे ट्रेनिंग मिल रही है। इंटरनेशनल लेवल्स में जैसे एथलीट को प्रैक्टिस करने कंपटीशन में जाने का मौका मिल रहा है। इससे एथलीट कुछ मेडल जीतने के लिए केवल नहीं, लेकिन वे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ रहा है और देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। हमारे भारत देश में आजकल स्पोर्ट्स साइंस फैसिलिटी और ट्रेनिंग बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने मैंने देखा है जहाँ भी सेंटर है उन्होंने बहुत अच्छी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है।
0: सांसद विष्णुपद राय ने प्रतिभागियों को स्वस्थ और नशामुक्त समाज के लिए शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान सचिव विनायक चामड़िया ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में भी जानकारी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत के रचनात्मक क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से जमीनी स्तर के डिजिटल रचनाकारों की पहचान करने, उन्हें निखारने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के पायलट चरण की शुरुआत की, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। इस चैलेंज में द्वीपों के तीनों जिलों के रचनाकारों को जनजातीय संस्कृति, पर्यावरण, पर्यटन, स्थानीय व्यंजन, पारंपरिक शिल्प और सामुदायिक उपलब्धियों सहित एमरल्ड आइलैंड्स की अनूठी पहचान प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित करता है। प्रविष्टियां 31 अगस्त तक वेब पोर्टल पर स्वीकार की जाएगी। इसके तहत प्रतिभागियों को 1 से 3 मिनट की मूल डिजिटल सामग्री पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। विजेताओं को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।
2: बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन के रूप में अवेलेबल होती हैं, बट कंटेंट किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं वो उस चीज को बड़ा एम्पलीफाई करता है। कोई एक चीज कोई एक दिन नेचुरल ब्रिज के बारे में, मान लीजिए नील शहीद ब्रिज के बारे में बता रहे हैं, आप उसी चीज को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बता सकते हैं कि किसी की लालसा और किसी का मन करेगी जब यहाँ पे आते हैं। बहुत कम लोग जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको बलिदान देवी के बारे में नहीं पता है। आप एक छोटा सा वहाँ के हैं, आप वहाँ का एक छोटा सा रील बना सकते हैं, छोटा सा कॉन्टेंट बना सकते हैं, कितने लोगों ने यहाँ पे अपनी लाइफ सैक्रीफाइस करी थी फॉर आवर फ्रीडम स्ट्रगल। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं इस पार्ट ऑफ अंडमान में रह रहा हूँ जहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है।
0: कार्यक्रम में डी ब्रेड के करीब 700 और टैगोर कॉलेज के करीब 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेल, फिटनेस, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रेरित करना और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। राजधानी श्री विजयपुरम स्थित विज्ञान केंद्र में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से परिचित कराना और उनमें वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता तथा अंतरिक्ष की खोज के प्रति रुचि बढ़ाना था। इस वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय था विकसित भारत की ओर नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा। कार्यक्रम के तहत स्कूली विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता और मध्य स्तर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। समारोह में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के कार्यालय प्रमुख सात्विकी पाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की। मुख्य अतिथि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के कार्यालय प्रमुख सत्यकी पाल ने इस अवसर पर कहा,
3: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 के अवसर पर इस वर्ष का थीम टुवर्ड्स विकसित भारत, इनोवेटिंग, कोलैबोरेटिंग एंड एस्पायरिंग टू ग्लोबल स्पेस लीडरशिप की भावना के साथ भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों और वैज्ञानिक प्रगति का उत्सव मनाया जाता है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा हमें नवाचार, सहयोग और मानव केंद्रित विकास का संदेश देती है। वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों

0: सामाजिक वैज्ञानिकों और समुदायों के बीच सहयोग के माध्यम से इस तकनीक और नीतियों विकसित कर सकता है जो समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास के लाभ पहुंचाए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमें ये संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि विज्ञान और मानवता के समन्वय के माध्यम से एक समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे।
1: दक्षिण अंडमान पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मादक पदार्थों और अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज किया है। दक्षिण अंडमान पुलिस द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को जानकारी देते हुए दक्षिण अंडमान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पिछले 60 दिनों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 15 मामले दर्ज कर 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आबकारी अधिनियम के तहत 62 मामले दर्ज कर 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
2: कुल मिलाकर 33 आरोपियों को अभी तक इन 15 केसेस में गिरफ्तार किया गया है। इन 33 आरोपियों में 30 अक्यूज जो है 18 से 40 के एज ग्रुप के 6 लड़के लोग हैं एंड बाकी 3 लोग 40 प्लस है। इसमें अभी 20 जन जुडिशियल कस्टडी में है, कुछ लोगों का बेल हुआ है एंड कुछ लोग अभी पुलिस कस्टडी में है एंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन 15 केसेस के दौरान हमने कुल मिलाकर अराउंड 1 किलोग्राम मेथैम्फेटामिन सीज किया है, 7.75 किलोग्राम गांजा और 523.75 ग्राम चरस हमने सीज किया है। हमने एक्साइज केसेस पे भी फोकस किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पूरे 2 महीनों के एक्टिविटीज में टोटल 62 एक्साइज केसेस रजिस्टर किया है विभिन्न थानों में एंड 62 अक्यूज को भी अप्रिहेंड किया है। साथ साथ टोटल 360 लीटर्स IMFL एंड 58 किलोग्राम इलिसिट हांडिया आरोपियों से गिरफ्तार किया गया है।
1: पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में 50 से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को नशे, शराब की लत और अवैध तस्करी के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। सोशल मीडिया पर दीप समूह की प्रमुख हस्तियों के 6 प्रेरणादायक वीडियो जारी कर नशे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और कानूनी दुष्प्रभावों, एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों, साथियों के दबाव का विरोध करने तथा स्वस्थ और जिम्मेदार जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया।
2: नशा न केवल एक व्यक्ति के जीवन पर दुष्प्रभाव डालते हैं, पूरे समाज के प्रगति पे वो बाधा डालते हैं एंड हमें नशा मुक्त भारत अभियान के रिगार्डिंग हम सबको एक साथ मिलके काम करना चाहिए एंड साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हमारे एंटायर पुलिस स्टेशन और पुलिस पर्सनल इस एंटायर अभियान के तौर पे पूरी तरह से कमिटेड है।
1: पुलिस ने आम लोगों से नशीले पदार्थों तथा शराब की अवैध बिक्री, भंडारण या परिवहन की सूचना देने की अपील की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 से इन द्वीपों में कार्यान्वित की जा रही है। योजना का उद्देश्य अप्रत्याशित प्राकृतिक घटनाओं के तहत पंजीकृत किसानों को बीमा कवर प्रदान करना है। यह योजना कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करती है और किसानों की आय को स्थिरता प्रदान करती है। द्वीप समूह के 3 जिलों में खरीफ 2026 सीजन के लिए धान PMFBY के तहत अधिसूचित फसल है। योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को भूमि रिकॉर्ड या प्रशासन द्वारा अधिसूचित अन्य दस्तावेज 31 अगस्त तक जमा करने को कहा गया है। किसानों को अपने संबंधित क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक या सहकारी बैंक में भूमि दस्तावेजों के साथ संपर्क कर योजना के तहत अपना नामांकन कराना होगा। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर स्वयं भी पंजीकरण किया जा सकता है। नामांकन के बाद फसल को किसी भी नुकसान की सूचना बीमित किसान सीधे 72 घंटों के भीतर कार्यान्वयन एजेंसी, संबंधित बैंक या स्थानीय कृषि विभाग को दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त पूर्वा गर्ग की अध्यक्षता में नवगठित जिला तकनीकी इकाई की एक समीक्षा बैठक आयोजित कर जल सेवा आकलन की प्रगति का जायजा लिया गया। बैठक में बताया गया कि जिले के कुछ 89 गांवों में से 67 गांवों के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से ग्राम स्तरीय जल आकलन फॉर्म जमा करके जल सेवा आकलन पूरा कर लिया गया है। जिला उपायुक्त ने DDU के सदस्यों और जिले के सभी तहसीलदारों को बचे हुए गांव का सत्यापन

कार्यतुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 का आयोजन अगले साल 10 से 12 जनवरी तक भारत मंडपम में किया जाएगा। यह पहल देश भर के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को विचार साझा करने, रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने तथा विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण में योगदान देने का एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करती है। इच्छुक प्रतिभागी चार ट्रैक के जरिए इसमें भाग ले सकते हैं। विकसित भारत चैलेंज वर्तमान में क्विज के माध्यम से उपलब्ध है तथा सांस्कृतिक ट्रैक एवं इनोवेशन फॉर भारत माई भारत पोर्टल पर सूचीबद्ध है। पहले से पंजीकृत प्रतिभागियों को माय भारत पोर्टल के माध्यम से VBYLD 2027 क्विज में भाग लेने का निर्देश दिया गया है। नए प्रतिभागी myBharat.gov.in पर अपना पंजीकरण कर माय भारत प्रोफाइल @MBPID बनाकर भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही समाचार तरंगणी का ये अंक समाप्त हुआ।

समाचार तरंगणी आकाशवाणी श्री विजयपुरम की क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से तैयार की जाती है। वाचिका अनामिका सेन गुप्ता, संपादक व प्रस्तुतकर्ता पी हरिकृष्णा।

अभी आप समाचार तरंगिणी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लम्हे की 20वीं कड़ी।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। बैलेंस डाइट महत्वपूर्ण रूप निभाती है, इसीलिए आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि किन फूड्स में फाइबर पाया जाता है और इनमें क्या शामिल करना चाहिए। फाइबर से भरपूर डाइट के साथ आपको बाकी पोषण तत्वों का भी ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ से आप फाइबर फूड्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चिया बीन्स में डाइटरी फाइबर होता है, जो डाइट फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। चिया बीन्स पाचन शक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। चिया बीन्स का सेवन करने से शरीर में अच्छा फैटी एसिड आता है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल भी सामान्य बना रहता है। एवोकाडो फ्रूट में भी डाइटरी फाइबर होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ सेहतमंद फैट से भरपूर होता है, जो वजन सामान्य और दिल सेहतमंद रखने में मदद करता है। इसमें विटामिन के और पोटेशियम भी पाया जाता है, जो फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स माने जाते हैं। यह शरीर में फ्री रेडिकल के द्वारा किए जाने वाले नुकसान होने से रोकते हैं। हाई फाइबर फूड लिस्ट में जुड़ी अधिक जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज के लम्हे प्रोग्राम में। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। राजमा और फलियां डाइटरी फाइबर से भरपूर होती है। इनमें प्रोटीन भी भारी मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम राजमा में आपको 6 ग्राम फाइबर मिलता है और पूरे दिन में 25 से 30 ग्राम फाइबर का सेवन करना चाहिए। इसके बाद हम कह सकते हैं कि राजमा एक अच्छा ऑप्शन है। राजमा एक अच्छा ऑप्शन इसलिए भी क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन पाया जाता है, जिससे मांसपेशियों का विकास और फैट बर्न एक साथ हो जाता है। छोले में हाई फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। राजमा के मुकाबले छोले में ज़्यादा फाइबर होता है। 100 ग्राम छोले में 8 ग्राम फाइबर पाया जाता है। फलिया

प्रोटीन, फाइबर, मिनरल और विटामिन से भरपूर होते हैं और उन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट में बादाम में सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। बादाम में फाइबर के साथ साथ कई सारे पोषण और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, जैसे कि विटामिन ई, मैंगनीज और मैग्नीशियम, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए और दिल की सेहत सुधारने के लिए बादाम को डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ब्रोकली अधिकतर हरी सब्जियों में सही मात्रा में डाइटरी फाइबर पाया जाता है और साथ ही विटामिन ई भी पाया जाता है, जो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ब्रोकली को हाई एकॉर्बोनिक नाइट्रेट के लिए जाना जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और कसरत अच्छे से करने में मदद करता है। क्विनोआ डाइटरी फाइबर, मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होता है। जो लोग ग्लूटेन फ्री फूड खाते हैं, उन लोगों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। क्विनोआ में मौजूद फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। काले सेम एक तरह की फली है, जिनमें डाइटरी फाइबर भारी मात्रा में पाया जाता है। ये फाइबर के साथ साथ मिनरल जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम से भी भरपूर होता है। मैग्नीशियम कैल्शियम को तोड़ने का काम करता है, जिससे हड्डियों में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाते हैं। आयरन हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है, जिससे खून में ऑक्सीजन का बहाव बना रहता है और ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होती है। सोयाबीन में प्रोटीन और सामान्य स्तर पर फाइबर पाया जाता है, जिसे आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। सोयाबीन विभिन्न प्रकार के होते हैं, इन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार कई तरह से बना सकते हैं। सोयाबीन के कई प्रोडक्ट हैं, जैसे कि सोया का आटा, टोफू, सोया दूध, सोयाबीन का तेल आदि। इन सभी प्रोडक्ट को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने खाने के पौष्टिक आहार और फाइबर बढ़ा सकते हैं। आर्टिचोक में आर्टीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me your RJ Chetan. Balanced diet महत्वपूर्ण रूप निभाती है, इसीलिए आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि किन फूड्स में फाइबर पाया जाता है और इनमें क्या शामिल करना चाहिए। फाइबर से भरपूर डाइट के साथ आपको बाकी पोषण तत्वों का भी ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ से आप फाइबर फूड्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चिया बीन्स में डाइटरी फाइबर होता है, जो डाइट फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। चिया बीन्स पाचन शक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। चिया बीन्स का सेवन करने से शरीर में अच्छा फैटी एसिड आता है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल भी सामान्य बना रहता है। एवोकाडो फ्रूट में भी डाइटरी फाइबर होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ सेहतमंद फैट से भरपूर होता है, जो वजन सामान्य और दिल सेहतमंद रखने में मदद करता है। इसमें विटामिन के और पोटेशियम भी पाया जाता है, जो फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स माने जाते हैं। यह शरीर में फ्री रेडिकल के द्वारा किए जाने वाले नुकसान होने से रोकते हैं। हाई फाइबर फूड लिस्ट में जुड़ी अधिक जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज के लम्हे प्रोग्राम में। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। राजमा और फलिया डाइटरी फाइबर से भरपूर होती है, इनमें प्रोटीन भी भारी मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम राजमा में आपको 6 ग्राम फाइबर मिलता है और पूरे दिन में 25 से 30 ग्राम फाइबर का सेवन करना चाहिए। इसके बाद हम कह सकते हैं कि राजमा एक अच्छा ऑप्शन है। राजमा एक अच्छा ऑप्शन इसलिए भी क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन पाया जाता है, जिससे मांसपेशियों का विकास और फैट बर्न एक साथ हो जाता है। छोले में हाई फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है, राजमा के मुकाबले छोले में ज़्यादा फाइबर होता है। 100 ग्राम छोले में 8 ग्राम फाइबर पाया जाता है। फलिया प्रोटीन, फाइबर, मिनरल और विटामिन से भरपूर होता है।

0: हैं और उन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट में बादाम में सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। बादाम में फाइबर के साथ साथ कई सारे पोषण और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, जैसे कि विटामिन ई, मैंगनीज और मैग्नीशियम, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए और दिल की सेहत सुधारने के लिए बादाम को डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ब्रोकली अधिकतर हरी सब्जियों में सही मात्रा में डाइटरी फाइबर पाया जाता है और साथ ही विटामिन ई भी पाया जाता है, जो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ब्रोकली को हाई एकॉर्बोनिक नाइट्रेट के लिए जाना जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और कसरत अच्छे से करने में मदद करता है।
1: श्रोताओं, अभी आप लम्हे की 20वीं कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अब पेश है कार्यक्रमों का विवरण। पहले लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की रूपरेखा। संध्या 7:05 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। इसके बाद 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। युवाणी के अंतर्गत 7:30 पर रक्षाबंधन पर आधारित फिल्म गीत सुनवाए जाएंगे। रात्रि 8 प्रस्तुत होगा सुगम संगीत। रात्रि 8:45 पर आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुन पाएंगे। रात्रि 9 सुनिए अंग्रेजी समाचार बुलेटिन न्यूज एट 9। स्पॉटलाइट का समय रहेगा रात्रि 9:15। रात्रि 9:30 पर आप सुन पाएंगे करंट अफेयर्स और रात्रि 10 आप प्रस्तुत होगा व्हाट्सएप संदेश पर आधारित फिल्म गीतों का कार्यक्रम संदेश से आते हैं। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा की शुरुआत होगी प्रातः 5:25 पर। प्रातः 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्रीटिप्स का समय रहेगा सवेरे 5:55। सवेरे 6:10 पर जलियानों का यात्रा कार्यक्रम प्रसारित होगा। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा खेल शीर्षक पर सवेरे 6:15 पर। रामचरितमानस गान का समय रहेगा 6:30। वतन के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत देश गान प्रसारित होगा सुबह 6:40 पर। सवेरे 6:50 पर आप सुन पाएंगे मौसम की जानकारी। संस्कृत में समाचार प्रसारित होगा 6:55 पर। जन सूचनाएं का समय रहेगा सुबह 7:00। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप सुन पाएंगे सवेरे 7:05 पर। देशरागिनी कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 7:15। सवेरे 7:30 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो डॉक्टर। विषय रहेगी आंखों की बीमारी, देखभाल और उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सीमा दास। सवेरे 8:00 सुनिए समाचार प्रभात। मॉर्निंग न्यूज दिल्ली से सुनिए सवेरे 8:15 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 8:30। तैरानी सुहानी का आनंद लीजिए सवेरे 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश का समय रहेगा दिन के 10:00। कार्यक्रम गीत गुंजन सुना जा सकता है। कार्यक्रम गीत गुंजन सुना जा सकता है दिन के 11:00। गीत अतीत कार्यक्रम का समय रहेगा दिन के 11:30। तेलुगु कार्यक्रम प्रसारित होगा दोपहर 12:00। दोपहर 12:30 पर आप सुन पाएंगे मलयालम कार्यक्रम। दिल्ली से प्रसारित समाचार आप सुन पाएंगे दोपहर 1:00। दोपहर 1:10 पर आप सुनिए सुगम संगीत। दोपहर समाचार प्रसारित होगा दोपहर 2:15 पर। दोपहर 2:30 पर हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, लेकिन 100.9 MHz पर आप दोपहर 2:30 पर सुन पाएंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक और दोपहर 3:30 पर सैनिकों के लिए होगा प्रोग्राम। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी संध्या 4:00 निकोबारी कार्यक्रम से। संध्या 4:30 पर आप सुन पाएंगे लम्हे की 21वीं कड़ी। संध्या 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। बाहरों की शाम कार्यक्रम का समय रहेगा 4:45। तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:00। बांग्ला कार्यक्रम प्रसारित होगा संध्या 5:30 पर। किसान वाणी कार्यक्रम का समय रहेगा 6:00, जिसपे आप श्रीमती सीताराम यादव की से ली गई बातचीत सुन पाएंगे।

होगा खेती किसान लाभ और व्यवस्था। संध्या 6:45 पर झलकी आप सुनेंगे। विज्ञापन का समय रहेगा शाम 7 बजे। संध्या 7:05 पर आप प्रादेशिक समाचार सुन पाएंगे। मौसम की जानकारी, जलियाना को यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं संध्या 7:05 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी के तहत राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम होगा ऐसा भी होता है। रात्रि 8 बजे सुनिए चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार प्रसारित होगा 8:30 पर। समाचार संध्या सुनिए 8:45 पर। वही विविध भारती मुंबई से प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत रात्रि 10 बजे। News@9 का समय रहेगा रात्रि 9 बजे। स्पॉटलाइट रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम राष्ट्रीय पत्रिका विज्ञान भारती सुन पाएंगे। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप कर्नाटक शैली में डॉक्टर मंदापाका सारदा का गायन सुनेंगे। इसी के साथ ही रात्रि 11 बजे मौसम की जानकारी व सभा की समाप्ति होगी। अभी आप हमारे केंद्र से आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7 बजे हैं। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें 7:05 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। संध्या 7:30 पर युवाणी के अंतर्गत रक्षाबंधन पर आधारित श्रोताओं के पसंद का कार्यक्रम सुनवाए जाएंगे। रात्रि 8 बजे प्रस्तुत होगा सुगम संगीत। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। समय रहेगा रात्रि 10 बजे।

0: श्रोताओं, कल इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा खेल शीर्षक पर सवेरे 6:15 पर। वतन के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत देश गान प्रसारित होगा सुबह 6:40 पर। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप सुन पाएंगे सवेरे 7:05 पर। कल देश रागिनी कार्यक्रम का समय रहेगा 7:15। सवेरे 7:30 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो डॉक्टर, विषय रहेगी आंखों की बीमारी देखभाल और उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सीमा दास। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा कल सवेरे 8:30। कार्यक्रम गीत गुंजन सुना जा सकता है दिन के 11:00। गीत अतीत कार्यक्रम का समय रहेगा दिन के 11:30 पर। तेलुगु कार्यक्रम प्रसारित होगा दोपहर 12:00। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या 7:05 पर आप प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई है।
2: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल, डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बच्चों और विद्यार्थियों के साथ रक्षाबंधन मनाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय समावेशन और देशवासियों के सशक्तिकरण में योजना के अभूतपूर्व योगदान को परिवर्तनकारी और बेमिसाल बताया। मायाबंदर के महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय में दक्षता पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच उड़ानों की कमी तथा अधिक हवाई किराए का मुद्दा केंद्र और प्रशासन के समक्ष उठाया।

सांध्य समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों तथा विद्यार्थियों के साथ रक्षाबंधन मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहां तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्यौहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करे तथा खुशहाली और समृद्धि लाए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। श्री मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व और परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देशवासियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल जमा राशि 3,17,000 करोड़ रुपए है। यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है और सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच को आसान बना रही है। योजना के तहत करीब 78% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं, जबकि लगभग 56% खाते महिलाओं के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, दक्षता पाठ्यक्रम और चैंबर ऑफ कॉमर्स। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में स्किल इंडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र की ओर से दक्षता 1.0 पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्र

आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में स्किल इंडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र की ओर से दक्षता 1.0 पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों को कल प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ आरवीआर मूर्ति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। स्किल इंडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र के नोडल अधिकारी डॉ एम सेल्वम और सभी विभागों के प्रमुख भी समारोह में शामिल हुए। डिजिटल साक्षरता के मूल सिद्धांत और आईटी प्रोफेशनल स्किल्स पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 16 छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। समारोह में छात्रों की शैक्षणिक, व्यावसायिक और रोजगार संबंधी दक्षताओं को बेहतर बनाने में डिजिटल साक्षरता और आईटी से जुड़ी क्षमताओं के महत्व पर भी जोर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर स्थित कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की विधिक सेवा समिति की ओर से 12 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर में सुबह 10 बजे से होगा। समिति की ओर से संबंधित पक्षकारों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की गई है। रक्षाबंधन के अवसर पर अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ ने नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ के साथ मिलकर आज सभी 24 वार्डों में सफाई मित्रों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के राज्य अध्यक्ष वेंकट लक्ष्मी ने वार्ड नंबर 22 ब्रिजगंज में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जबकि भारतीय मजदूर संघ के पूर्व राज्य अध्यक्ष एम वीरन्ना वार्ड नंबर 24 में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। विभिन्न वार्डो में आयोजित इन कार्यक्रमों में संबद्ध संघों और राज्य ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच विमानों की कमी तथा अधिक हवाई किराए का मुद्दा विभिन्न स्तरों पर उठाया। इससे पर्यटन, व्यापार और द्वीपवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर अधिक हवाई किराए और अपर्याप्त हवाई संपर्क की समस्या से अवगत कराया। इसके अलावा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव और सांसद के समक्ष भी यह मुद्दा उठाया गया। चैम्बर के प्रतिनिधियों ने हवाई अड्डा निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों तथा प्रमुख विमानन कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच विमानों की संख्या और यात्री क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया। अंडमान विधि महाविद्यालय द्वारा संचालित बीए एलएलबी पाठ्यक्रम में रिक्त सीटों के लिए चौथी काउंसलिंग 5 सितंबर को आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग का आयोजन कॉलेज सभागार में सुबह 10 बजे से होगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित समय पर काउंसलिंग में उपस्थित हो सकते हैं। कृषि निदेशालय के अंतर्गत संचालित केंद्र शासित प्रदेश कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी में अनुबंध के आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटरों के पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 4 सितंबर को सुबह 11 बजे हैडो स्थित कृषि निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों से अपने मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय से आधा घंटा पहले साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित होने को कहा गया है। अंडमान निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर सलाहकारों की नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार 3 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे से वन सदन के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया जाएगा। अंडमान निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से एएनएम और प्रयोगशाला सहायक के कुल 65 पदों पर 6 महीने की अल्पकालिक संविदा नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। एएनएम के 51 और प्रयोगशाला सहायक के 14 पद रिक्त है। उम्मीदवारों को निर्धारित साक्षात्कार के समय से एक घंटा पहले स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में उपस्थित होना होगा। एमवी स्वराजदीप 31 अगस्त को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से विशाखापत्तनम के लिए रवाना होगा। अतिरिक्त सामान 30 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच जहाज पर चढ़ाया जाएगा। यात्रियों के जहाज पर चढ़ने की प्रक्रिया 31 अगस्त को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच होगी। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त कार्यालय में कल दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच परीक्षण के उद्देश्य से सुनामी सायरन

बजाए जाएंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि परीक्षण के दौरान बजने वाले सायरन को लेकर किसी प्रकार की अफवाह या भ्रम में न आए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बच्चों और विद्यार्थियों के साथ रक्षाबंधन मनाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय समावेशन और देशवासियों के सशक्तिकरण में योजना के अभूतपूर्व योगदान को परिवर्तनकारी और बेमिसाल बताया। मायाबंदर के महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय में दक्षता पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच उड़ानों की कमी तथा अधिक हवाई किराए का मुद्दा केंद्र और प्रशासन के समक्ष उठाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत,
3: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
0: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी,
4: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
0: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक,
5: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
0: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर,
6: यन पॉलिसी यन कयल।
0: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें। फसल बीमा

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:26 हुए हैं। अब सुनिए मौसम, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान एवं निकोबार तट तथा आसपास के समुद्री तटों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और इनके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से झोंके आने की संभावना है। समुद्र की स्थिति उग्र रहने की आशंका की गई है, अतः मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 31 अगस्त तक समुद्र में न जाएं।

अब सुनिए जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार MV रानी लक्ष्मी कल शनिवार 29 तारीख को सवेरे 6 बजे शिवजयपुरम से रंगत के लिए प्रस्थान करेगा। यह जलयान स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत पहुंचेगा। जलयान की वापसी उसी दिन 29 तारीख को दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप के लिए MV कमोटा कल शनिवार 29 तारीख को सवेरे 6:15 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इसकी वापसी उसी दिन सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्रीविजयपुरम के लिए होगी। कल यानी शनिवार 29 तारीख को MV बम्बुका सवेरे 6:15 पर श्रीविजयपुरम से स्वराजदीप के लिए रवाना होगा। यह जलयान उसी दिन सवेरे 8:45 पर स्वराजदीप से छूटकर श्रीविजयपुरम वापस आएगा।

एमवी स्टेट आइलैंड कल 29 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रंगत के लिए चलेगी। यह जलयान शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला व लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाएगी। इस जलयान की वापसी अगले दिन 30 तारीख को सुबह 7 बजे इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानीचंगा कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए चलेगा। यह जलयान उसी दिन 11 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा तथा इसकी वापसी यात्रा उसी दिन दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम के लिए होगी। मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए एमवी भारत सीमा कल 29 तारीख को रात्रि 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की वापसी अगले दिन 30 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत कल शनिवार 29 तारीख को दिन के 11:30 पर स्वराज द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा। यह जलयान उसी दिन दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा इस दोपहर 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा 29 तारीख को दोपहर 2:30 पर शहीद द्वीप के लिए चलेगा। इस जलयान उसी दिन दोपहर 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। स्वराज द्वीप के लिए कल एमवी जॉली बॉय 29 तारीख को दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की वापसी अगले दिन 30 तारीख को स्वराज द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी भारत सीमा 19 तारीख को प्रातः 9 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुल के लिए प्रस्थान करेगा। वापसी यात्रा 30 अगस्त 2026 दोपहर 2 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। अब सुनिए जन सूचनाएं। क्या आपके ज़िले में कोई ऐसी पहचान है जिसे आप पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसार मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुँचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक वेव्स OTT ऐप पर माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:22 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं बंधन फिल्म के एक गीत के साथ। गायक कलाकार है कुमार सानू, गीतकार है देव कोहली और संगीत आनंद राज आनंद का है।

श्रोताओं, दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में, विनोद राठौड़। तर्ज बनाई है देव कोहली ने, संगीत राम लक्ष्मण का है। फिल्म का नाम है दुल्हन बनू मैं तेरी।

श्रोताओं, इसी के साथ ही दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नांदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज रक्षाबंधन के अवसर पर हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आए हैं विशेष फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रेशम की डोर।

रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जिसमें एक छोटी सी राखी के धागे में स्नेह, विश्वास, अपनापन और बचपन की अनगिनत यादें बंधी होती हैं। यह पर्व भाई बहन के उस खूबसूरत रिश्ते का प्रतीक है जिसमें कभी नोकझोंक है, कभी रूठना मनाना है तो कभी बिना कहे एक दूसरे के साथ खड़े रहने का भरोसा है। राखी का यह धागा देखने में भले ही साधारण हो, लेकिन इसके साथ जुड़ी भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। बचपन में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भाई उसकी रक्षा और हर सुख दुख में साथ देने का वचन देता है। समय बीतता जाता है, बचपन पीछे छूट जाता है, लेकिन राखी का यह रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। कभी भाई बहन एक ही घर में साथ रहते हैं तो कभी पढ़ाई, नौकरी या शादी के बाद दूर हो जाते हैं, मगर रक्षाबंधन आते ही वही बचपन, वही शरारतें और वही पुरानी यादें मन में फिर से जीवंत हो उठती हैं।

दोस्तों, रक्षाबंधन केवल राखी बांधने और मिठाई खिलाने का त्यौहार नहीं है, यह उन यादों को फिर से महसूस करने का अवसर भी है जो भाई बहन के बचपन को खास बनाती है। वही छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, एक दूसरे की शिकायत करना, फिर थोड़ी देर बाद साथ बैठकर खेलना, कभी भाई का बहन को चिढ़ाना और कभी बहन का उसकी छोटी सी गलती माँ से बता देना। बचपन की ये नोक झोंक ही तो आगे चलकर खूबसूरत यादें बन जाती हैं। भाई बहन का रिश्ता इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें औपचारिकता नहीं होती। जहाँ बाकी रिश्तों में कई बातें सोच कर कहनी पड़ती है, वहीं भाई बहन एक दूसरे से बेझिझक अपनी बातें कह सकते हैं। यही सहजता इस रिश्ते को और मजबूत बनाती है। रक्षाबंधन हमें यह भी याद दिलाता है कि रिश्तों की असली खूबसूरती महंगे उपहारों में नहीं, बल्कि समय देने, एक दूसरे को समझने और मुश्किल समय में साथ खड़ा रहने में है। और जब बात भाई बहन के प्यार की हो तो एक खूबसूरत गीत याद आना स्वाभाविक है। तो आइए दोस्तों, साथ में सुनते हैं।

दोस्तों, हम आपको बता दें, यह गीत हमने लिया है फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से, और इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है किशोर कुमार जी ने। दोस्तों, कहते हैं कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से समझे।

जाते हैं। और भाई बहन का यह रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। राखी का एक धागा जैसे बचपन से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक इस रिश्ते को जोड़ कर रखता है। तो दोस्तों, इस अवसर पर प्रस्तुत है भाई बहन के प्रेम और उस अनमोल बंधन को समर्पित कुछ पंक्तियाँ। रेशम की एक डोर है, पर इसमें पूरा संसार है। बहन की दुआओं का सागर, भाई का अटूट प्यार है। बचपन की वो मीठी बातें, वो रूठना और मनाना, छोटी छोटी सी खुशियों में एक दूजे का मुस्कुराना। दूर भले हो जाए राहें, दिलों की दूरी कहाँ होती है। राखी के इस पावन धागे में हर याद फिर से जवां होती है। ना धन चाहिए ना कोई उपहार, बस बना रहे ये प्यारा सा प्यार। हर जन्म मिले ऐसा ही रिश्ता, भाई बहन का रहे सदा साथ। यही तो है रक्षाबंधन, एक धागा एक वचन, और जीवन भर साथ रहने वाली अनमोल यादों का बंधन।

दोस्तों, बचपन में भाई बहन का रिश्ता जितना सहज होता है, समय के साथ उसमें उतनी ही जिम्मेदारियां और भावनाएं जुड़ जाती हैं। खासकर बहन जब विवाह के बाद अपने नए घर चली जाती है, तो भाई बहन की रोज की मुलाकातें भले ही कम हो जाएं, लेकिन उनका अपनापन कभी कम नहीं होता। भाई के लिए बहन हमेशा वही छोटी सी गुड़िया रहती है, जिसकी छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करना उसे अच्छा लगता है। और बहन के लिए भाई हमेशा वह इंसान रहता है, जिसके सामने वह बिना झिझक अपने मन की बात कह सकती है। दोस्तों, रक्षाबंधन इसी रिश्ते को फिर से महसूस करने का दिन है। राखी की डोर केवल कलाई पर नहीं बंधती, बल्कि यह दिलों को जोड़ती है। इसमें बचपन की शरारतें भी हैं, बीते हुए पलों की यादें भी हैं, और आने वाले कल के लिए ढेरों शुभकामनाएं भी। कभी भाई की कलाई पर बंधी राखी उसे बहन की याद दिलाती है, तो कभी बहन को भाई की मुस्कान याद आती है। यही तो इस रिश्ते की खूबसूरती है। साथ हो या दूर, भाई बहन एक दूसरे के जीवन का हिस्सा हमेशा बने रहते हैं। दोस्तों, रिश्ते वक्त के साथ बदलते जरूर हैं, लेकिन सच्चे रिश्तों की भावनाएं कभी कम नहीं होती। आज बहुत से भाई बहन पढ़ाई, नौकरी या विवाह के कारण एक दूसरे से दूर रहते हैं। रक्षाबंधन के दिन शायद हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी ना बांध पाए और हर भाई अपने बहन के पास ना पहुंच पाए, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और दुआएं हमेशा मौजूद रहती हैं। कभी एक फोन कॉल, एक संदेश या वीडियो कॉल के जरिए ही राखी की रस्म पूरी हो जाती है, लेकिन उस छोटे से संदेश के पीछे छिपी भावनाएं बहुत बड़ी होती हैं। कई बार जीवन की व्यस्तता में हम अपने अपनों को समय नहीं दे पाते, और रक्षाबंधन जैसे त्योहार हमें रुक कर अपने रिश्तों को याद करने और उन्हें महसूस करने का अवसर देते हैं। रक्षाबंधन भी हमें यही सिखाता है कि रिश्तों को निभाने के लिए हमेशा बड़े अवसरों की ज़रूरत नहीं होती। कभी एक छोटी सी बातचीत, एक मुस्कान और एक दूसरे की चिंता ही काफ़ी होती है। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व हमें यह संदेश देता है कि जीवन चाहे कितना भी बदल जाए, सच्चे रिश्तों की गर्माहट कभी कम नहीं होनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता केवल एक दिन राखी बांधने तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने, हिम्मत बढ़ाने और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की खुशियों में खुश होने का रिश्ता है। आज के इस विशेष अवसर पर उन सभी भाइयों और बहनों को ढेरों शुभकामनाएं, जो दूर रहकर भी एक दूसरे के दिल के बेहद करीब हैं। कुछ बहनें आज अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पा रही होंगी, और कुछ भाई अपनी बहन से दूर होंगे, लेकिन याद रखिए, रिश्तों की दूरी भावनाओं की दूरी नहीं होती। तो इसी प्यारी सी भावना के साथ हम आज के अपने रक्षाबंधन के इस विशेष फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रेशम की डोर को विराम देने से पहले सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें बहन के मन में भाई के लिए छिपे स्नेह की खूबसूरत झलक मिलती है।

0: दोस्तों हम आपको बता दें, यह गीत हमने लिया है फिल्म काजल से और इसे आवाज दी है आशा भोसले जी ने।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: तो दोस्तों इसी के साथ रक्षाबंधन के अवसर पर आज का ये विशेष फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रेशम की डोर यहीं पर समाप्त होता है।

दोस्तों, कल इसी समय हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लताराज नंदिनी को इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

श्रोताओं, युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रेशमी डोर सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थी पी. लताराज नंदिनी।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, आइए अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है अनजाने में। संगीतकार है कल्याण जी आनंद जी, बोल गुलशन बावरा के हैं।

0: and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: श्रोताओं, चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अनुराग फिल्म का एक गीत। इस गीत को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी तथा गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

0: श्रोताओं, चित्रपट संगीत में अगला गीत सुनते हैं रूप तेरा मस्ताना फिल्म से। इस गीत को अपनी आवाज़ें दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीतकार हैं आशित भोपाली व संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: प्यारा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग

0: श्रोताओं, अभी आप आँख मिचोली फिल्म का एक गीत सुन रहे थे। इसे अपनी आवाज़ से सजाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। बोल राजेंद्र कृष्णन के थे व धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने।
1: बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग

श्रोताओं, अभी आप आपकी खैर फिल्म से एक गीत सुन रहे थे। गीतकार थे बप्पी लहरी और लता मंगेशकर, तथा धुन से सजाया था बप्पी लहरी ने।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम के अंतिम में सुनते हैं 9-2-11 फिल्म से अगला गीत। संगीत SD बर्मन का है, बोल मजरू के हैं व गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

श्रोताओं, 9-2-11 फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती के अतिरिक्त आसाम के तेजपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन में लोअर डिवीजन क्लर्क का एक पद उपलब्ध है। इस पद के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। पूर्व सैनिकों को निर्धारानुसार आयु में छूट दी जाएगी। 6 महीने या उससे अधिक की निरंतर सैन्य सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों की वास्तविक आयु से उनकी सैन्य सेवा की अवधि घटाकर आयु की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त एससी, एसटी, ओबीसी तथा अन्य पात्र श्रेणियों में उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को केवल जाति के आधार पर आयु में छूट नहीं मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही कंप्यूटर पर इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट या हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग गति आवश्यक है। पद का वेतन 7वें पे कमीशन के पे मैट्रिक लेवल 2 के अनुसार होगा। इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित एप्लीकेशन फॉर्म में आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियों के साथ अपना आवेदन एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर आसाम 7841004 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन की है। रोजगार समाचार अब यहीं समाप्त होता है। अब सुनिए गौरव गान।

श्रोताओं, अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
2: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
3: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से

0: डालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया, इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है, हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
1: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
2: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
4: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
6: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
7: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं।

0: है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
1: भारत सरकार ने योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
0: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800184747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी UGCnet.NTA.NIC.IN पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
4: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष

0: के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हैरल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकच से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम मनोज सिंह राणा विद द न्यूज एट 9। The headlines: India sends third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance to flood-hit Nepal. External Affairs Ministry says 320 Indian nationals remain uncontactable. The death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 547. Over 1,500 people remain missing on both sides of the border. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. Government measures improve market availability of sugar, ensure faster movement, ex-mill sugar prices fall by around 20%. India's index of industrial production records growth of 6.7% in July this year. And India's Velaval Senthil Kumar to take on Hungary's Balázs Farkas in the final of PSA Budapest Squash Open tonight. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. H.J. Shankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in 2 flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding both nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi today, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at Trishuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. He said another 96 Indian nationals who were stranded on the Chinese side have safely crossed into Nepal by land and efforts are underway to evacuate them. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected area yesterday have arrived in New Delhi this afternoon.
2: 21 Indian nationals who had yesterday arrived in Kathmandu from the area that was affected by

0: and Yojana, India's leap towards inclusive finance. The participants were Sharad Kohli and Dilip Chinoy, economic analysts. The moderator was Tina Jha, the journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR.
1: Current Affairs.
2: हम आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब समय हो चला है आपके पसंदीदा व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम संदेश से आते हैं का।

श्रोताओं, आइए देर ना करते हुए सुनते हैं आज की पहली फरमाइशी गीत। ये है सादर बाजार मारवाड़ बिलाड़ राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान और तरुण और प्रतीक। तो चलिए सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अगली फरमाइशी गीत सुनते हैं साथी फिल्म से, ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। इस गीत को पसंद किया है जगदीश धाकड़ नाइमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ ने। तो चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा, माही और मजनू का टिला से कमल, मधु, सागर व संपूर्ण बलूजा परिवार सुनना चाहते हैं ये फिल्म का ये गीत। तो आइए सुनवाते हैं इनको ये गीत।

विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष व संपूर्ण विश्वकर्मा परिवार सुनना चाहते हैं बाजीगर फिल्म का ये गीत। ये है पलेरा टीकमागढ़ मध्य प्रदेश से। तो चलिए

ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से ये है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। ये सुनना चाहते हैं मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का ये गीत, तो आइए सुनते हैं ये नगमा इनकी पसंद का।

संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव ये सुनना चाहते हैं गेम फिल्म का ये गीत। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये नगमा।

तो दोस्तों, व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं अब यहीं संपन्न होता है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। नमस्कार। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:30 हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान एवं निकोबार तट तथा समुद्री क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा यह बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 31 अगस्त 2026 तक समुद्र में न जाए। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:30 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

हेलो, दिस इज पीसी। हेलो, दिस इज पीसी स्टूडियो। अनाउंसर माइक नंबर वन। देन नाउ टाइम इज हेलो, दिस इज अनाउंसर माइक नंबर टू। देन नाउ टाइम इज 5:01:38:39।

0: बोलने का ना।
1: राइट कंप्यूटर P2।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 अगस्त सन 2026। सुबह के समय 5:28 और 37 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत।